लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

मेरे वाल है जो तू मेरे नाल है महाराज जी ता क्या मुछंदा मुछंदे का मतलब है मेनू मोहताज मैं किसे दा क्यों बना मैं किसे कोलों क्यों मंगा जो तू मेरे कोल है मैं तेरे कोलों ही मंगना मैं तेरे अगे हाथ अड्डने ने महाराज तू ही दो मेनू है ना मोहताज नहीं मैं बनना दुनिया का इसे शब्द का बड़ा सुंदर जिक्र आता है जो महाराज नाल हुंदे ने फिर की हुंदा है।

ये जड़े शब्द ने लक्ष्मी तोट ना आवई खाए खर्च रहंदा, जिन्ना मर्जी खर्ची जाओगे जदों गुरु नाल आ गया रब नाल आ गया तुहानू पैसे की कमी नहीं आनी। याद रखना ये वेख लो फरमान है महाराज का हुक्म है। लक्ष्मी तोट ना आवई, लक्ष्मी मतलब पैसा, लक्ष्मी दी तोट नहीं आती किन्ना नू जिहड़े मनुख अपने गुरु दे नाल प्रभु दे चरणा च बैठे हुए। खाए खर्च रहंदा, खर्ची जांदे ने खाई जांदे ने तां वी कमी नहीं आउंदी।

ये वैरी मित्र सब कीते हैं। वैरी महाराज जी जो नाल आ जान किसे नाल भी दुश्मनी ना रखना, सब नू अपना मित्र बना लो। सारे मेरे मित्र ने, किसे ना मेरा वैर विरोध नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं किसे ना। जे लड़ाइयां हैगियां भी ने तां भी खत्म कर लो कि हुण महाराज जी दे नाल आ गए हाँ, महाराज के चरणी आ गए हाँ। तो जिहड़े महाराज नू प्यारे ने तुहाडे सारे महाराज, तुहाडे ते सारी दुनिया प्यारी है, तो साढ़े भी प्यारे ने, है ना। कोई वैर विरोध नहीं रखना। महाराज कहिंदे वैरी मित्र सब कीते हाँ, ना ही मंगे मंदा। मैं मंदा भी नहीं मंगना, ये नहीं वैर नहीं तो सड़ना भी नहीं कि ये तरक्की क्यों कर गया, ये मेरा भरा तरक्की क्यों, मेरी भैन तरक्की क्यों कर गया, मेरा ये क्यों तरक्की कर गया, वो भाई क्यों तरक्की कर गया, वो बंदा क्यों तरक्की, मेरा पड़ोसी क्यों तरक्की, सड़ना भी नहीं। ये चीज़ां याद रखने वाली ने। जो रब नाल जां तू मेरे वल है तां क्या मुँह छंदा। महाराज जो तुम मेरे नाल हो फिर मैनू की करना है, वो दस रहे ने महाराज जी।

जा हर बख्शंदा, जदों हरी ने बख्श दिता, बख्शंदा मतलब हरी हरी कर लिया, गुरु दे कोल बैठ के की कीता, वाहेगुरु वाहेगुरु की है, हरी हरी करना, रब रब करना, वाहेगुरु वाहेगुरु करना, ईश्वर ईश्वर। जदों मारे कहते लेखा कोई ना पूछे, लेख पलट दिते मारे ने, लेख बदल दिते सारे मारे ने, नहीं लिखिया तो लिख के विखा दे, मैं रब तेनू ता मनना, मेरा विछड़िया गुरु मला दे, मैं रब तेनू ता मनना।

प्रभु भगवान दो जिक्र आए। इस पौड़ी दे अंदर पंचम पातशाही दा शब्द है। महाराज जी कहंदे ने आनंद पिया सुख पाया। कदों आनंद आया, कदों सुख मिलिया, जां मारे कहंदे मिल गुरु गोबिंदा, मैनू गुरु मिल गया ते मेरा भगवान मेरा प्रभु मिल गया, मेरा वाहिगुरु मिल गया। देखो उदों सुख मिलता है, उदों आनंद मिलता। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, जदों गुरु मिल जांदा आनंद।

सबे काज सवारी है। हुण इस पंक्ति दे महाराज कहिंदे ने सब काज सवर जांदे ने, जां तुद पावंदा जो तेनू पा गया, मैं तेरा बन जा तेनू मैं पा गया, सारे काज तू सवार के रख देने, सब कुछ ठीक कर देने। ते तुही मारे दे क्यों नहीं तुसी लड़ लगदे? कहो महाराज जी अह की लेना इधर उधर, जां तू मेरे वल है, तू मेरे वल है, मैनू किसी की फिक्र नहीं।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: The School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूँ गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की। मैं कोशिश करता हूँ अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। बहुत कुछ खास होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जनाब अली, ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगता है? 01204060205 पर आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं, यानी कि शहर का एसटीडी कोड लगाना न भूलेगा। 120 नंबर हो जाता है 4060205, इसके जरिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और कभी लगता है कि एक मुलाकात बहुत जरूरी है तो आप हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। कहा जाता है Where are you? The world is here. शारदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय और दिल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जब लोग आते हैं तो हम उनसे बेझिझक मुलाकात करते हैं, और मुलाकात का जो सिलसिला है लगातार आगे बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान है। कौन है, कहाँ से है, बड़े ही खूबसूरत दोस्त है, उनसे हम बातें करेंगे, बताएंगे जरूर कि वो कौन है। सो कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑन शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जब कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है वो सारी बातें हम यहां से कर रहे होते हैं, जैसे कि बिंदास सुबह में बिंदास बोल बिंदास बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें, डॉक्टर्स की बातें, बहुत कुछ खास हम लेकर आ रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए, जब बिंदास बातों का जिक्र किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ने पढ़ाने की बातें होंगी और बातें होंगी स्टूडेंट्स के बारे में, बातें होंगी जिंदगी को किस तरीके से बिंदास जिया जा सकता है। तो खैर, फाइनली आज हमारे साथ हमारी एलुमनाई जुड़ रही हैं जिनका बड़ा ही खूबसूरत नाम है, नाम मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। 2018 पोस्ट बीएससी की आप पास आउट स्टूडेंट हैं और इनका जो कोर्स कंप्लीट हुआ 2020 में, 2020 में ये कोर्स कंप्लीट हुआ और ये अपने देश बांग्लादेश चली गई और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में आप वर्किंग वुमेन हैं, क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ इसके बाद कुछ प्लान हैं इनके। और कोविड के समय की अगर हम बात करें तो कोविड के समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फाइनली ज्यादा इंतजार नहीं कराता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शारदा विश्वविद्यालय की एलुमनाई शहजादी, वाकई बहुत ही खूबसूरत नाम है शहजादी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस्तकबाल।
1: थैंक यू सो मच। आई एम शहजादी, आई केम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट विद यू।
0: मैं भी बहुत खुश हूँ शहजादी, क्योंकि जब मैंने सुना कि शहजादी आ रही है, बांग्लादेश की शहजादी आ रही है, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ माधवी जुड़ रही हैं जो कि SNSR फैकल्टी एलुमनाई कोऑर्डिनेटर हैं शारदा विश्वविद्यालय में। जब वो मुझे बता रही थी कि शहजादी आ रही है तो मेरा सवाल ये था कि ये कहाँ की शहजादी है?
1: बांग्लादेश
0: की शहजादी है। तो माधवी मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: मुझे बताइए कि ये जो आपने एलुमनाई मीट के बारे में डिस्कशन किया या जो सोचा, इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से काम कर रही होती हैं?
1: सर, जैसे शारदा विश्वविद्यालय हर साल हम स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं यहाँ पर पढ़े, एक्सपीरियंस ले, ग्लोबल एक्सपीरियंस ले। जब वो पढ़ के अपना कोर्स कंप्लीट करके यहाँ से जाते हैं तो हम एक एलुमनाई कनेक्ट करते हैं उनसे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके यहाँ के जो उन्होंने जो एक ज्ञान एक गुरुकुल में जो एक्सपीरियंस किया है वो कैसे वर्ल्ड वाइड उस नॉलेज को सोसाइटी के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं और क्या क्या अचीवमेंट ली है और शारदा विश्वविद्यालय का नाम कैसे आगे लेकर गए हैं, बिकॉज दे आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शारदा
0: यूनिवर्सिटी। राइट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इत्तफाक रखता हूँ। सो थैंक यू सो मच माधवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी रही और आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि किस तरीके से इस प्लानिंग के तहत आप आगे बढ़ रही हैं। शहजादी, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं बातों का जो सिलसिला है लगातार आपके साथ जारी रहेगा। सो लिसनर्स कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़ रही हैं शहजादी जो कि बांग्लादेश से हैं और 2018 की आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट हैं, 2020 में इनका कोर्स यहाँ से कम्प्लीट हुआ और वर्तमान समय में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप प्रेसिडेंट क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की आप प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही साथ फाउंडर भी हैं। इनसे बहुत कुछ जानेंगे मगर छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जाहिर सी बात है कि जब एक स्कूल कॉलेज हमें अच्छा मिल जाता है तो वाकई बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ की फैकल्टी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ने पढ़ाने का माहौल अच्छा है, करिकुलम एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ हम यहाँ से सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। फाइनली एक दिन आता है रुखसती का, विदा होने का, उसके बाद अपना सिलसिला शुरू होता है कि मुझे क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो यही सारी बातें कर रहा हूं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एलुमनाई हैं शारदा विश्वविद्यालय की बीएससी नर्सिंग डिपार्टमेंट से शहजादी, जो कि बांग्लादेश से हैं। तो शहजादी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस रहा शारदा यूनिवर्सिटी का, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा?
1: मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इधर का शारदा का जो है बोलती है वर्ल्ड इज हियर, मेरे को सच्ची में लगती है वर्ल्ड इज हियर, क्योंकि इधर में अगर हम इतना दूर से आया है, इधर का जो फैकल्टी है बहुत लगता नहीं है फैकल्टी है, लगता है हमारा फैमिली का मेंबर है। तो उसके हमारे साथ जितना भी इंस्पायर किया, सब कुछ में हेल्प करती है बहुत ज्यादा अच्छी से। लेकिन मैं इतना दिन मैं बहुत अच्छी से रहा इधर में, और हम जब बाहर में रहती है, जब माय पेरेंट्स आर फ्रॉम यूके, सो उधर में हम लोग क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखती है,
0: इंडिया का सीरियल,
1: इंडिया का सीरियल, दिल्ली का क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखती है। तो वो लोगों ने बोला क्राइम इधर में जाओगी कैसे रहेगी, उसको इतना ट्रस्ट नहीं था, उसको कॉन्सेप्ट कुछ अलग था, कोई भी नहीं आना चाहती थी जो हाँ इधर नहीं आएंगे। लेकिन जब मैं इधर में एडमिशन हुआ, मेरा पापा मम्मा ने देखा है, और इधर का जो सिक्योरिटी है, इतना भी क्राइम पेट्रोल हो जाए लेकिन शारदा का जो सिक्योरिटी है, जकार्ता जो लोग है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो मेरा जो फैमिली का जो एक कंसेप्ट था, हाँ उधर में बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल होती है, लेकिन उसको चेंज हो गया, उसको अभी वो रिस्पेक्ट करती है, हाँ बहुत अच्छा कंट्री है, अच्छा जगह है, और शारदा तो बेस्ट है।
0: वाओ, नाइस क्लैपिंग, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, आपने अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया कि इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। और जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, मुझे ये सुनकर वाकई बहुत खुशी हुई, क्योंकि क्राइम पेट्रोल जब आप देखा करती थी तो लोगों के दिमाग में यही था, जो कि आपने बताया कि पेरेंट्स ऐसा सोचा करते थे, आपके जानने वाले सोचा करते थे कि अगर आप इंडिया जाएंगी तो वहां इस तरीके का क्राइम होता है, कहीं आपके साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। लेकिन आपने कहा कि यहाँ का माहौल अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये सुनकर शहजादी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके साथ जो बातों का सिलसिला है बहुत अच्छा होने वाला है। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा, बहुत बड़ी ही खूबसूरत एलुमनाई है, और किस तरीके से खूबसूरती के साथ इन्होंने शारदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है, ये उनके खुद के विचार हैं। और क्या है आगे जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरी यानी गगन के साथ। और मेरे साथ जुड़ी हुई है शहजादी मल्लिकाय फ्रॉम बांग्लादेश।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं शहजादी बांग्लादेश से और आप यहां की एलुमनाई हैं, बीएससी नर्सिंग की आप स्टूडेंट रह चुकी हैं, 2020 की पास आउट हैं। तो शहजादी, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है।
1: ओके।
0: पढ़ने पढ़ाने की हमने बात की थी, अब हम बात करते हैं कि यहाँ की जो करिकुलम एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते थे, कैसा लगता था और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना प्लीज।
1: हाँ, जितना भी करिकुलम था वो तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि मैं इधर का जो फैकल्टी है या टीचर है हमारा, वो सब कुछ लगता है वो हमको बच्चे जैसा हर टाइम हमको पास रखती है, जो भी होती है डांटती है। तो उस टाइम मेरे को स्ट्रेस भी आया, ये लोग बहुत डांटती है, लोग बहुत ज्यादा काम कराती है। लेकिन फिर बाद में स्लोली स्लोली जब मेरे को अचीवमेंट होती है तब लगता है नहीं, ये तो मम्मी जैसा ही वो करती है। तो इसमें मेरे को बहुत अच्छी लगा, ये लोग बहुत हमको प्यार करती है, हमको डांटती है तो हमके भलाई के लिए डांटती है। तो इसलिए मैं जितना भी पार्टिसिपेशन हुई है इधर में, उसने इनकरेज किया, हाँ तुम इसको करो, ये करो, अगर फेल हो और विन हो वो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अगर एक्सपीरियंस लोगी तो तुम्हारा लाइफ के लिए अच्छा होगी। तो इसने बहुत, इधर का जो भी फैकल्टी है, मेरा नर्सिंग का जो फैकल्टी में उसको हर टाइम मिस करती हूँ, इधर का बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारा दीन, हमारा माधुबी मैम, वो तो मैं जब उसको पहली बार देखा यूनिवर्सिटी में, उस टाइम मेरे को नहीं जानता क्योंकि मैं पहले एक महीने पहले आया इधर में, फिर मैं इंटरनेशनल डिवीजन में काम किया कंप्यूटर का। तो उस टाइम एक महीने के बाद ही मेरा स्टडी शुरू हुआ है नर्सिंग का, तो उसको पहले मैं देखा है हॉस्टल में, तो इतना अच्छी था, वो नहीं जानती मैं उसका स्टूडेंट हूँ, मैं भी नहीं जानती हूँ मेरा टीचर।
0: ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत इंसिडेंट हुआ आपके साथ।
1: इंसिडेंट हुआ। और उतने माधुबी मैम बहुत अच्छी है, एक्चुअली के लगता है मेरा खुद का बहरा बहन है, मेरा कोई बड़ा बहन नहीं है, हम तीन ही बहन है, तो मेरे को लगता है वो मेरा बहन जैसे है, मैडम से ज्यादा बहन लगता है।
0: सो स्वीट शहजादी, बाकी आपके जो विचार है, आपके जो थॉट्स हैं, मैं जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत खूबसूरती के साथ अपने शब्दों को आप बयां कर रही हैं कि जो जो आपने फील किया, चाहे वो फैकल्टी के साथ आपके रिश्ते की बात हो, आपने जहां काम किया और आपको नहीं पता कि सामने वाला जो क्लाइंट है मेरे ही टीचर होने वाले हैं, उनके साथ जो संबंध रहे, रिलेशन आपके रहे, वो भी आप बयां कर रही हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, अपनी बातों को आप यहां रख रही हैं हमारे लिसनर्स के सामने। तो उसके बाद जो सिलसिला रहा, यहां से जो आपने सीखा, समझा, दोस्तों के बारे में आप मुझे बताइए कि यहाँ के दोस्त आपके साथ जुड़े बने, यहाँ का कल्चर आपने क्या डिफरेंट पाया?
1: एक्चुअली क्या है, हमारा कंट्री और इंडिया में इतना फर्क नहीं है,
0: समान
1: है, एक ही था। हाँ। क्योंकि एक ही था। अगर आप हमारा जो प्राउड है, हमारा जो 1971 में जो फाइटिंग हुआ है, उसमें अगर बहुत बड़ा हेल्प योगदान है तो वो हमारा इंडिया का है, क्योंकि उस टाइम जो इंदिरा गांधी मैम था उसके से हमने हेल्प करके हमारा देश को जीता है, तो इसका हमका बड़ा दान है इधर में। तो इंडिया का हमारा लगता नहीं है हमारा दूसरा कंट्री, लगता है हमारा घर ही है,
0: बहुत खूबसूरत।
1: और उधर का जो लोग होती है, हमारा इधर का जो लोग होते हैं, सब सेम होती है। इधर का जो भी हॉस्पिटलिटी है और जितना भी लोगों को खुद अपना समझती है, उधर में भी सेम है, कोई फर्क, इतना फर्क नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, हम सबको अपना समझती है, क्या बात है, ये जो एक्सेंट आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। इसके बारे में ऑफ एयर आपसे बात हुई थी कि ये जो एक्सेंट आ रहा है क्या बांग्लादेशियों का ऐसा है या आपका है तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में शहजादी से हम जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़ी हुई है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग की आप स्टूडेंट रह चुकी है, आप एलुमनाई है और बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रेसिडेंट फाउंडर भी हैं आप क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी के, इसके बारे में भी जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कार्य।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शाता 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
1: आले मेरे को भूल गए तुम, अगर कोई अच्छे अच्छे स्टूडेंट आते हैं खुद ही बात करने लग जाते हो, मेरे को पीछे रख दिया तुमने। मेरे को ये क्या बोलते है?
0: दिल।
1: हाँ दिल दुखा है मेरा, बहुत ज्यादा दिल दुखा है। मतलब इतनी प्यारी शहजादी स्टूडेंट आई है, तुम खुद ही बात करने लग गए।
0: नहीं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें भी मैं इंट्रोड्यूस करा था।
1: नहीं, मेरे को इंट्रोड्यूस कब कराओगे? शहजादी बीबी, हाय, हाउ आर यू?
2: आई एम फाइन, हाउ आर यू?
1: देखो गगन ना खुद ही बात कर रहे थे, मेरे को नहीं लेकर आए थे, मेरा बहुत दिल दुखा है, मेरे से बात करो ना।
2: मैं गगन से सॉरी बोल रही हूँ आपके लिए।
0: देखा बहादुर, आपसे शहजादी बात कर रही है, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं।
1: हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुमने एक्सेंट मार नहीं रहे थे, जो तुम बोल रहे थे, क्या बांग्लादेश में ऐसे ही बोलते हैं या कहीं से बाहर से आपकी परवरिश हुई है? कौन सा देश है बताओ ना। हम
2: मैं क्या है, मैं बांग्लादेश से हूँ, लेकिन मैं जब छोटा था तब मेरा फादर सिविल इंजीनियर।
1: बेटे अभी भी तुम छोटे हो, कौन से बड़े हो गए?
2: आपसे तो छोटी ही हूँ।
1: मेरे को इतना बुजुर्ग ना बनाओ बेटा। हाँ तो अब मुद्दे की बात पर आओ।
2: ठीक है, तो मेरा फादर ने इंजीनियर था, तो उसने सऊदी में गया था, तो उसके बाद हम लोग जो फुल फैमिली है वो उधर में शिफ्ट हो गया, तो उधर में मेरा स्कूलिंग हुआ है। उधर के बाद मेरा फैमिली लंदन में आ गया, तो उधर का मेरा फादर को गवर्नमेंट से सब कुछ मिल गया, तो उधर में चला आया, गुड अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग उधर में रहा, फिर मैं इंडिया में रहा, मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है बैंगलोर में, उधर में स्टडी किया, तो उसके बाद मैं नर्सिंग में आया। तो इसलिए मेरा एक्सेंट सब फ्रेंड्स वगैरह सबको साथ एक साथ रहने के कुछ अलग हो गया।
1: अब मैं जा रहा हूँ गगन।
0: मतलब क्यों?
1: अरे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत भ्रमण किया इन्होंने, मैं इनके सामने बैठ ही नहीं पा रहा। मतलब यूके घूम कर आई है, लंदन घूम कर आई है, और मतलब सब जगह घूम लिया इन्होंने तो।
0: हाँ, ये बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत पहुंची हुई है, मतलब हर जगह का इन्होंने पानी पिया है और बहुत समझदार है।
1: हाँ, मैं अब तुम ही बात कर लूँ।
0: तो खैर, बहादुर को मैंने एक तरफ रख दिया। शहजादी, मुझे ये तो रही बात आपकी, अलग अलग देशों में आप गई हैं, बहुत कुछ आपने सीखा है, समझा है, कब आपको लगा कि यार मुझे अपना कुछ करना है? जैसे आप खुद मुझे बता रही थी कि आप प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की, तो इसके बारे में दिमाग में कब आइडिया आया?
2: हाँ, इसमें उस टाइम में मेरे जब नर्सिंग का डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा करने के बाद मैं एक प्रोग्राम था, मेरे को सीखना है, मेरे को जानना है इस दुनिया में क्या हो रही है। तो मेरे को जो नर्सिंग में आया हो, तो मैं नर्सिंग में बहुत बड़ा होना चाहती थी, तो इसलिए क्या हुआ, मैं एक डॉक्टर को एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला मेरे को इधर में रेफरेंस रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उसने मेरे को बोला तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम नर्स हो, तुमको इधर में बांग्लादेश का था। हाँ, तो बांग्लादेश का था, तो उसने बोला जो तुम नर्स हो तुमको इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारा जो भी स्टडी वगैरह जो भी है इधर में कोई काम नहीं है। तो मैंने बोला आप जो स्टडी करा रही हो वो एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी के लिए कर, तो वो बहुत अच्छा टॉपिक था, तो मेरे को वो सीखना था। तो उसने बोला नहीं, ये तुम्हारा टॉपिक नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो मैंने सोचा अगर कोई बांग्लादेश में, मैंने सोचा अगर उसका कॉन्फ्रेंस हो सकती है, डॉक्टर का अगर सोसाइटी है बांग्लादेश में, तो नर्स का क्यों नहीं होगी। तो इसने मैंने सोचा ठीक है मैं नर्सिंग सोसाइटी बनाऊंगी। तो मैंने मेरा जो मेरे चार फ्रेंड को बोला, उसने बोला ठीक है चलो।
0: फ्रेंड्स के नाम भी बताइए।
2: हाँ, मेरा फ्रेंड का नाम है नाहिदा, दूसरा फ्रेंड का नाम है सलीम, और तीसरा फ्रेंड का नाम है आयशा। तो मैंने इस तीनों को बताया, उसको बोला जो हम लोग ये करना चाहते। उसने बोला
0: दोस्तों ने मिलकर ही कंपनी।
2: हाँ, उसको उसने बोला तुमको पागल हो गया, तुम ऐसे के ऐसे करोगे, बहुत बड़ा फाउंडेशन है, ये नहीं कर सकती। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, तुम साथ मेरे साथ रहना। तो उसने मेरे को हेल्प किया, सपोर्ट किया है, तो उसको सपोर्ट से मैं बनाया। मैं हर जगह में हर नर्स को पास गया, कोई नर्स मेरे को उस टाइम उतना प्लेस नहीं दिया। उसने बोला ये क्या है, तुम क्या करोगी, हमको नहीं करनी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसे बोलती थी। तो मैंने उस टाइम सैलरी मेरे को मिलता था 20,000 रुपीज। तो उसने मैंने क्या किया, मेरा जो 5% मीन 55,000 आई कीपिंग फॉर माई गोइंग एंड कमिंग, एंड 15,000 मैंने इसमें खर्च किया। तो इसमें खर्च करके इसको थोड़ा सा बनाया। फिर मैंने हमारा कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको साथ मिला, उसको से हमारा जो सोसाइटी है उसको इनोग्रेट किया। तो बांग्लादेश का हेल्थ मिनिस्टर से हमको रजिस्ट्रेशन लिया, और ये जो क्रिटिकल केयर सोसाइटी है ये बांग्लादेश में एक ही सोसाइटी है जिसको रजिस्ट्रेशन मिला।
0: क्या बात
2: है,
0: क्लैपिंग बनती है, बहुत खूबसूरत शहजादी, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही है। हाँ, बहुत अच्छा एक स्ट्रगल।
2: सिर्फ ऐसे ही नहीं किया, उसको करने के बाद मेरे को सोचा ठीक है बांग्लादेश में कर लिया, अभी मेरे को इंटरनेशनल भी इसको दिखानी है तो इसको दिखानी है। तो बांग्लादेश में जितना भी हमने ऑलरेडी 500 स्टूडेंट को मैंने वर्कशॉप किया, उसको सिखाया फ्री में। हमारे जो ये सोसाइटी है उसमें हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं, सिर्फ दुआई लेते हैं।
0: बहुत खूबसूरत।
2: और क्या होती है, हम जितना भी हॉस्पिटल में जाती हूँ उसको हम फ्री में सबको सिखाती है, सब कुछ करते, सिर्फ उसमें उसको टाइम देती है हमको, तो उस टाइम में हम सिखा देते हैं। तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट 85 यूनिवर्सिटी स्कूल हॉस्पिटल में कर लिया है इससे काम। अभी 5000 नर्स है जिसको क्रिटिकल केयर के बारे में सब कुछ आती है। तो उस टाइम मैंने एक बार मैं अमीरात से नेपाल में गया, नेपाल में जाने के बाद उसको इंटरनेशनली मेरा जो लोगो है ना उसको बारे में बताओ। जब मैं फाउंडेशन किया तब मैं गया वेबसाइट खोलने के लिए, लोगो बनाने के लिए, तो उसने बोला लोगो बनाऊंगी तो 32,000 रुपी लगेगी। मैंने बोला मैं तो कमाती हूँ 20,000, तो 30,000 कैसे करेंगे। तो मैंने बोला अगर इस लोगो को बनाना सीखने में कितना लगती है, तो उसने बोला 1,000 लगती है। तो मैंने बोला ठीक है मैं सीख लूंगी 2 महीने में। तो मैंने ग्राफिक डिजाइन और इंटीरियर जो भी है उसको सीखा, उसे सीखने के बाद फिर मेरा खुद का लोगो मैंने खुद बनाया है।
0: क्या बात है, ग्रेट ग्रेट शहजादी, रियली नाइस टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई।
2: उसको बनाया, उसको बनाने के बाद फिर मैं इंटरनेशनल नेपाल में गया, उधर में हमारा लोगो उधर उसको जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें डाला। फिर उसके बाद मैंने एमिरेट्स में गया, एमिरेट्स प्राइम मिनिस्टर के हमको अवार्ड रिवॉर्ड दिया उधर से, तो उधर के भी लेकर गया। फिर ऑस्ट्रेलिया में लेकर गया, फिर श्रीलंका में लेकर गया। हमारा सोसाइटी को होल अभी सब जानती है, हाँ एक अच्छा सोसाइटी है।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुभकामनाएं शहजादी आपकी सोसाइटी के लिए, आपके लिए, आपका भविष्य उज्जवल रहे, आपकी जो मुरादें हैं नेक मुरादें, इंशाल्लाह ठाकुर जी भगवान आपकी मुरादें पूरी करें। आपसे बात करके वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे होंगे कि जब आप कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, एक रणनीति के तहत अगर इंसान आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर आफ्टर सम टाइम वो अपनी मंजिल को पा ही लेगा।
1: हाँ देखो बेटा, मैं इसीलिए बात नहीं कर रहा था, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ये, बहुत दूर दूर तक घूमे, लेकिन गगन एक बात कहना चाहता हूँ।
0: हाँ।
1: कान लाओ, ये मैडम कह रही है कि हम दुआएं लेते हैं, पैसा
0: मतलब
1: पैसा मुझे दिलवा दो ना।
0: बाद तुम हमेशा ऐसी नोटी वाली बातें करते रहते हो। खैर, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं हैं शहजादी, कुछ और बातें जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपको अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और मेरे साथ जुड़ी हुई है बहुत ही टैलेंटेड खूबसूरत

शहजादी जो कि यहाँ की पास आउट हैं। खूबसूरत इसलिए क्योंकि उनके दिल के विचार बहुत ही खूबसूरत हैं। खूबसूरत इसलिए कि लोगों की दुआएं लेती हैं, पैसे नहीं लेती। खूबसूरत इसलिए कि बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत कुछ सीखना समझना चाहती हैं। तो शहजादी है मेरे साथ, जानेंगे जरूर और आगे की बातें, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: अल्लामा इकबाल साहब का बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ। और इस वक्त शहजादी बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और यहां की आप एलुमनाई रही हैं। आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया 2018 से 2020, ये एक समय था। और इसके बाद इन्होंने खुद का अपना एक, आप प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की, ये इनकी सोसाइटी है। और बहुत कुछ इनकी जर्नी के बारे में हमने जाना है, स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। अब हम आते हैं एक ऐसी खास बात के बारे में जिक्र करना चाहते हैं। कोरोना का समय ऐसा समय रहा कि जिसकी वजह से सब लोग परेशान रहे, लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ईश्वर खुदा कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहा होता है। तो ऐसी कुछ शहजादी ने सोचा और लोगों के बीच में गई, क्या रहा वो कोविड का समय, किस तरीके से इन्होंने लोगों की मदद की, किस तरीके से इनका वर्क एक्सपीरियंस रहा। शहजादी, अब आप प्लीज मुझे इसके बारे में बताइए।
1: हाँ, कोविड का जो टाइम आया था वो हमारे इस वर्ल्ड के लिए बहुत खतरनाक का था, टाइम था। सबने डरती थी, सबने घर से बाहर नहीं आया। अगर उस टाइम में मैंने जब स्टडी मेरा पास आउट हो गया तो मैंने बांग्लादेश चला गई। जाने के बाद मैं कोविड में स्टार्टिंग किया, काम किया। कोविड का जो फुल आईसीयू है, 50 ICU है, उसमें मैंने इंचार्ज था, उसका इंचार्ज था, उसके काम किया। मैंने खुद भी 4 बार कोविड से आक्रमण हुआ है।
0: Oh my God.
1: तो पहले बार जब हुआ था तब तो कोविड का काम करते करते, क्योंकि हमारा उधर का हार्ट का पेशेंट आती है, कोविड भी है, उसका हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है और दूसरा रेस्पिरेटरी। तो उस जो टाइम था, उस टाइम मेरे को एक ही सोचना था कि मेरे को इसको बचानी है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं कोविड का ओपन ड्रेस जो था उसको ओपन करके मैं खा रही थी, तो उस टाइम एक बच्चा ने मेरे सामने आकर बोले, मेरा पापा अभी अंदर गया है, वो क्या बचेगी मेरा पापा, क्योंकि मैं खो दूंगी। तो वो मेरा दिल में चला गया। तो मैंने सोचा, उसका हार्ट अटैक आया था, उसको कोविड पर था, हार्ट अटैक था। तो उस टाइम मैंने खाना सिर्फ लेंगे, तो मैंने उसको उधर के छोड़ के मेरा कोविड का ड्रेस भी नहीं पड़ा। मैंने बोला कोविड का ड्रेस पहनने में 10-5 मिनट लगेगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर उसको सेव नहीं करूंगी तो ये बच्चे को उसको पापा चला जाएगी। तो हमने गया उधर को, उसको CPR दिया। CPR देने के बाद, कोविड का पेशेंट को CPR देना मना है, क्योंकि CPR देंगे तो एक्सप्रेस होगी उसमें, इसलिए
0: हाँ
1: जो वायरस फैलेगी, क्योंकि उसको कवर करके सेव करनी है। तो मैंने बोला वो सब डॉक्टर जो था उसने बोला हम नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कर लेंगे, मेरे को बचाना है इसको। तो उसको ना 25 मिनट कंटिन्यू किया, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो मैंने मेरा हौसला नहीं छोड़ा, मैंने बोला फिर 10 मिनट करेंगे, फिर देखेंगे क्या होती है, क्योंकि उसको बच्चा जो रोती है ना, वो मेरे दिमाग में खेल रही थी। तो मैंने फिर 10 मिनट किया, फिर एट द लास्ट 7 मिनट ही कम बैक।
0: आए हाय माशाल्लाह।
1: तो
0: अरे तुम्हारे चरण कहाँ है शहजादी, तुम्हारे चरण कहाँ है, तुम जीत गए, तुमने हमारा दिल ले लिया। मतलब कितना अच्छा काम कर रही है। देखो, किसी की जिंदगी लाना बहुत बड़ी बात है, तुम्हें पता नहीं गगन। हाँ वाकई ये नेक काम किया, मेरी आंखें भी नम हो गई शहजादी, जिस तरीके से बहादुर अपनी बात रख रहे हैं कि आपने दिल जीत लिया, कसम से हमारे बहादुर का, हमारे श्रोताओं का, कि किसी की जिंदगी देना बहुत बड़ी बात है। और आपकी बातों से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि हौसला अगर आपका बुलंद है तो निश्चित तौर पर वो काम हो ही जाता है। आपने 25 मिनट तक CPR दिया, उसके बाद 10 मिनट तक फिर आपने दिया, आप थकी भी होंगी, तो कैसा रहा वो पीरियड?
1: वो जो पीरियड था उसमें ना मेरे को इतना थकान नहीं लगा, उसने मेरे को एक ही चीज था कि वो जो आदमी था वो 35 का था और उसका बच्चा 5 का था, बहुत क्यूट था। तो और उसको बीबी भी 17 का है, हमारा कंट्री में मुसलमान जल्दी शादी कर लेते हैं। तो एक बच्चा, एक 17 ईयर्स का लड़की, उसको आहार देख रही है और उसको बचाएंगे तो मैं नर्सिंग में क्यों आई? तो यही मेरा था। तो मेरे को था, मेरे को जो हाँ, मेरे को अगर CPR 5 मिनट देती है तो उसको हैरान हो जाती, वो नहीं दे सकती। लेकिन मैंने बोला मेरे को नहीं, ठीक है। मेरे साथ और भी एक ब्रदर था, उसका नाम है रकीब, तो उसने भी किया। उसने बोला आप इतना मत करो, मैं कर रही हूँ। तो उसने कर रही है, मैंने बोला मेरे सेटिस्फाई नहीं रहा। मैंने बोला मैं CPR का आहार से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं उधर से एक्रीडेशन उसी उधर में पास किया है। तो मैंने बोला मैं CPR का रजिस्टर नर्स हूँ फ्रॉम आहार से, तो मेरे को करना है, मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कोई हाल में इसको बचानी है। और उस टाइम मैं उसको कर रही थी और मेरा को मुसलमान का जो धर्म का जो प्रेयर होती है वो भी पढ़ रही थी उसके लिए। तो उसको दोनों करके फिर जब वो आया, जब उसको उसको बीट हुआ, तब मेरे को एहसान आया, अभी मैं खुश हो गया। लाइफ में कुछ करती है तो उसमें अगर सुकून मिलता है, और लोगों को जब भी मैं में कोई प्रॉब्लम में देखती हो, कोई दिक्कत में देखती हो, अगर उसको कुछ कर सकती हो, उसको हंसी दे सकती हो, तो मेरा लगता है ये मेरा बहुत
0: बहुत खूबसूरत शहजादी। रियली रियली मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से दिल से दुआएं हैं आपके लिए, क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने अगर आपको जमीन पर इस काम के लिए भेजा है, आप बेझिझक लोगों की मदद करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास सिर्फ दुआएं ही होती हैं, रुपया पैसा नहीं होता। आप इस काम को करते वक्त कभी ये मत देखेगा कि ये अमीर है गरीब है, इस काम को निस्वार्थ तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा आपके लिए, सोसाइटी के लिए। रियली रियली रियली रियली नाइस टॉक टू यू शहजादी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर कर, और आपकी मुरादें पूरी होती जाएं, आप अच्छा करें, बेहतर करें, और बस दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ और कहना चाहती हूँ तो आप कह सकते हैं।
1: हाँ, मैं कहने चाहती हूँ कि हमारा कंट्री में बहुत ये बच्चा जन्म लेती है, इंडिया में भी लेती है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होती है, जब जन्म के बाद ही उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करने में 2-3 लाख लग जाती है, इंडिया में भी लगती है, बांग्लादेश में भी लगती है, तो उस तरह बच्चे को पास इतना पैसा नहीं होते जितना उसको लगेगी, कोई की है गरीब है, बहुत गरीब है, उसको नहीं लगती है। तो एक तुर्की का एक कंपनी है और सऊदी अरब का एक कंपनी है, जो उसको ये एनजीओ है, उसमें हेल्प लेकर हमारे बांग्लादेश में एक डॉक्टर और मैं भी उसके साथ शामिल हूँ, तो उसमें मैं नर्सिंग का फ्री जो उसका जो 10 दिन का केयर होती है वो मैं फ्री में देती हूँ, उसको सब कुछ मैं करती हूँ, और जो डॉक्टर का ऑपरेशन वो करती है, तो उस तरफ का हम लोग जितना भी बच्चा है जिसको भी हार्ट प्रॉब्लम है उसको फ्री में कराती हूँ। अब 400 बच्चे को ऐसे कर लिया
0: अपनी सिटी में, करा
1: देश हमारे में करा। देश में किया, आपका इंडिया में भी करा, आपका इंडिया में जो छत्तीसगढ़ है उधर में एक हार्ट इंस्टीट्यूट है, तो उधर में भी हमारा डॉक्टर है, हमारा जो उधर का जो टीम है उसको साथ हमको एक साथ काम करती है। अगर इंडिया में भी ऐसे बच्ची होती है जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है लेकिन उसको पैसा नहीं है, तो वो छत्तीसगढ़ जो हॉस्पिटल है हार्ट का, तो उधर में जा सकती है।
0: अच्छा, ग्रेट। शहजादी मुझे एक चीज बताइए, कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई अगर आपसे जुड़ना चाहे, शहजादी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो शहजादी का सोशल मीडिया एक जरिया हो सकता है या कुछ और दूसरा जरिया हो सकता है, अगर आप कुछ बताना चाहें तो किस तरह से लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं?
1: हाँ, मेरे साथ मेरे फेसबुक का जो मेरा पेज है उसमें भी बात कर सकती है, मेरे इंस्टाग्राम है तो उसमें भी बात कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई की किसी को मदद लगेगी और किसी कोई भी हेल्प, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं किसी का मदद करेंगी तो दूसरा बार अल्लाह ने मेरे को लिए कुछ भेजेगी मदद करने के लिए। एक्चुअली आई डोंट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू बी डाई, when I die, people should have a smile on their face, that this is Shahzadi.
2: अरे बेटे, तुम मरने की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे तो दिन अभी शुरू हुए, और तुम देखो जाना बेटा एक दिन सबको है, लेकिन तुम हमेशा जिंदा रहोगे, हमारे दिलों में रहोगे, शाबाश शाबाश मेरे लाल, लगे रहो।
0: देखो शहजादी है तुम ऐसे,
2: अरे नहीं शहजादी जो बहुत अच्छा काम कर रही है, आई लव यू शहजादी।
0: ये बहादुर है, ये ऐसी सी बातें करते हैं।
2: अरे प्यार करना कोई गलत बात है शहजादी? तुम बताओ।
1: नहीं, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, प्यार तो दिल से करना चाहिए।
2: हाँ देखा,
1: तुम प्यार किया तो डरना क्या,
0: क्या बात है। शहजादी मेरी तरफ से रियली रियली रियली बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप नेक काम कर रही है, सोसाइटी के लिए काम कर रही है, और बस यही प्रार्थना है परवरदिगार से कि आपका ये काम अच्छा।
1: और एक मैं बात बताऊं, जब मैं कोविड में काम करने थे तब मेरे को जो नेदरलैंड है, नेदरलैंड ही हॉस्पिटल है, तो उसका जो हॉस्पिटल से मेरे को जॉब ऑफर आया था, उसका 4 लाख सैलरी था, और दूसरा आया था कनाडा से, तो उसमें भी मेरा हाई सैलरी था। तो मैंने सोचा अगर मैं इस टाइम में कोविड में अगर अच्छा सैलरी मिला, इस कोविड में सब मौका ढूंढती है, तो इस मौका में चला जाएंगे तो मैं खुद को गिल्ट फील करेंगे, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया उस टाइम में, क्योंकि मेरे को उस टाइम कहाँ पे भी नहीं जाना था, मेरे को मेरा खुद का कंट्री का लोगों का हेल्प
0: करूंगा, क्योंकि मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि जॉब में शायद बंद कर रह जाएंगे। ये काम अगर आज आप शुरू करेंगे तो बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, कनेक्ट होना चाहेंगे, और आपके जरिए लोगों को मदद भी मिलेगी। तो मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है कि जो आप काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, आप यूं ही करते रहें।

0: बोला जब मैं उसको देखा था वो तब मेरे को पता नहीं था वो मेरा टीचर था तो वो बहुत इंस्पायर करती है मेरे को क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग है जिसमें हमारे कंट्री में इंडिया में तो आर्ट ऑफ लिविंग एक अच्छा चीज है जिसमें लोग जाएगी तो उसमें बहुत कुछ सीखेगी तो उसको भी मैंने उसको से सीखा है उसको वो मेडिटेशन जानती है तो उसको से मेडिटेशन सीखा है देन जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई कोई दिक्कत हुई तो मेरे को हर टाइम सपोर्ट किया इतना सपोर्ट किया है लाइक व्हेनेवर आई फॉल लाइक यू नो दैट आई फॉल समवेयर लाइक आई एम ब्रेकिंग डाउन टू मच आई हैव अ डिप्रेशन एंड दैट टाइम शी वॉज इन फ्रंट ऑफ मी एज लाइक अ लायन I feel like oh, there was a lion to come and save me. So this is the she is like that. They always helping me as a lion. So I really appreciate her. Whatever she's doing for me, this is really thankful.
1: Thank you so much, Shahzadi. और शुक्रिया आपके लिए माधवी बहुत अच्छी बात आपके फेवर में सुनने को समझने को मिल रही है बाकी आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ऐसे टैलेंट को अगर आप ढूंढ कर लेकर आ रही हैं जो अपने लिए अपने देश के लिए सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और जो कि यहाँ के शारदा के एलुमनाई हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कुछ और कहना चाहती हैं माधवी आप कह सकते हैं
2: हाँ और जैसे आपने बताया कि एलुमनाई का है तो एलुमनाई में हमारे जो मेन जो एक यूनिवर्सिटी लेवल पर जो सेल वर्क करता है जो मेन इसकी लाइक की करता जाता मैम है मोनिका मैम गंगा सर है जो एलुमनाई सेल को देख रहे हैं और बोर्ड ऑफ मेंबर जो काफी मतलब जब हमारी शारदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है उस टाइम से अजीत सर हरी सर मोनिका मैम दिस All are working as a team. तो और इनके अलावा जो स्टूडेंट मेंबर हैं जो मेन एलुमनाई सेल के चैप्टर को इनोग्रेट कर रहे हैं एवरी कंट्री में अनुराग एंड उनकी टीम सो आई विद देयर कोलेबोरेशन जो आज हमारे एलुमनाई है वो हर कंट्री में जा रहे हैं एंड नॉट ओनली लाइक शहजादी दे आर सो मेनी लाइक एलुमनाई दे आर डूइंग आई जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल ड्यूरिंग कोविड टाइम जब हमारी इंडिया की एम्बेसी ने सभी स्टूडेंट्स को वापस ला रही थी तब हमारे शारदा के कुछ स्टूडेंट दे आर वर्किंग इन कंट्री लाइक कैनेडा ऑस्ट्रेलिया वो नर्सिंग सर्विसेज दे रहे थे दैट टाइम दे डिनाइल कि नहीं वी वॉन्ट टू सर्व दिस कंट्री बिकॉज दैट टाइम जब हमें चाहिए था तो हम यहाँ पर थे और अब इस कंट्री को जरूरत है वहां की इवन की वहां के खुद के स्टाफ ने वहां पर लोगों ने छोड़ दिया था पर इंडियन नर्सिंग्स जो थे वो स्टिल दे आर वर्किंग एंड उन्हें अप्रिशिएट किया गया है
1: क्या बात है माजी वाकई अगर मैं आपको मौका ना देता और अगर आप खुद ये मौका ना लेती तो ये अच्छी बात हम नहीं कह पाते सो रियली मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं दिल से कि आपने बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई बहुत अच्छा आप लोगों ने हमें समय दिया और बस शुभकामनाओं के अलावा मुझे लगता है कुछ और बातें होती ही नहीं है शुभकामनाएं अपने आप में बहुत बड़ी चीजें अच्छी चीजें कि दुआएं हर किसी को चाहिए और दुआएं तभी मिलती हैं जब हम कोई नेक काम कर रहे होते हैं किसी का दिल जीतना आसान है बस आप उसके बारे में अच्छा कहिए अच्छा सोचिए और अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा बेहतर होगा आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई
2: सर हमें धन्यवाद
1: थैंक यू शहजादी सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ना टेंशन लेने की जरूरत ना किसी को टेंशन देने की जरूरत जिंदगी बाकी बहुत खूबसूरत है इसे प्यार के साथ मोहब्बत के साथ खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर

0: बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है।
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरक्षा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:14 हो चुके हैं। 14 तारीख है यानी कि मंगलवार का दिन, और ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से, बजरंग बली से यही दुआ, यही प्रार्थना रहती है कि सबका मंगल ही मंगल हो, कभी किसी का मंगल न हो। इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर पहुंचिए, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और ऑन रोड यातायात के नियम कानून का अच्छी तरीके से पालन करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। महामाया से अगर आप आ रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ, तो एक छोटा सा ट्रक आपको खराब मिलेगा आपके राइट हैंड पर, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अनावश्यक तौर पर आप हॉर्न न बजाएगा, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेगा, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ गुजारते चले जाइए। फिलहाल मौसम का जो मिजाज है वो आज क्या रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में आज का अधिकतम तापमान यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है, और जिसमें आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। भारी उमस और चिलचिलाती धूप के कारण दिन के समय भीषण गर्मी महसूस होगी। बारिश कब होने वाली है, कहां होने वाली है, और दिल्ली एनसीआर में जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो धूल आ रही है इस वक्त, दिल्ली की आबो हवा कैसी, उसके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। 120 शेयर का स्टडी कोड 40 60 205 हमारा नंबर, इसके जरिए आप हमसे संपर्क सूत्र के माध्यम से संपर्क बना सकते हैं। नदियों पार, रूही एल्बम, ब्यूटीफुल ट्रैक, और जाह्नवी कपूर पर फिल्म आ गया ये गाना, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ। उसके बाद एक जन संदेश होगा डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ। क्या बात है, लवली ट्रैक आया है।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना

0: करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। अब आज स्टूडियो क्लॉक 9:27 हो चुके हैं। 14 तारीख है यानी कि मंगलवार का दिन, ट्यूजडे। भागदौड़ शुरू होती है स्कूल कॉलेजेस के रिजल्ट आने के बाद, यानी कि 12th के रिजल्ट के बाद भागदौड़ ये होती है कि एक अच्छा स्कूल मिले, एक अच्छा कॉलेज मिले, एक अच्छा विश्वविद्यालय मिले जहां मेरा बच्चा पढ़ सके। और यही हम आपको कहने जा रहे हैं कि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट यानी कि SSMFE में अगर आप आते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ आपको जानने को, सीखने को, समझने को मिलेगा। एक छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज हैं SSMFE में, यानी कि प्रोडक्शन की बातें हैं, आर्जिंग की बातें हैं, एडिटिंग की बातें हैं, एंकरिंग की बातें, फिल्म प्रोडक्शन की बातें, फिल्म मेकिंग की बातें और भी बहुत कुछ। और शारदा विश्वविद्यालय आपसे यही कहता है कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। चलिए हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहिए। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की मौसम के मिजाज के बारे में, तो अपडेट निकल कर ये सामने आ रही है बौद्धू कि उत्तर प्रदेश में मॉनसून की जो गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएंगी और मौसम विभाग के अनुसार 17 से लेकर 19 जुलाई के दौरान यानी कि वीकेंड पर राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। और बादलों की आवाजाही की अगर मैं बात करूं तो आवाजाही थोड़ी तेज होगी, गरज चमक के साथ बारिश का दौर देखने को भी आपको मिल सकता है। और मौसम विभाग ये कह रहा है कि 17 से लेकर 19 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक्ट रहेगा और पूर्वी और पश्चिम यूपी के कई जिलों में 17, 18, 19 जुलाई को वीकेंड पर घने बादल छाए रहेंगे और मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। तो कुल मिलाकर खुले में टेंट ना गाड़े, ये सही था। ये सही था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुशांत 90.8 एफएम। बारिश का लुत्फ जरूर उठाएगा। बारिश हम सब के लिए लाभकारी है लेकिन कहीं कहीं हानिकारक हो जाती है क्योंकि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से सीवर के ढक्कन खुले होते हैं, बारिश में वो नजर नहीं आते, जनधनानी होती है। समझदारी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। गुड मॉर्निंग, मैं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लाइक लाइक लाइक गड्डी पूरे होश आवाज में चलाएगा। आए हाय,

0: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
1: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
0: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: चुटकी।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते।

0: बताइए।
1: देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:45 हो चुके हैं। 14 तारीख है यानी कि 14 जुलाई। हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी है। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का फर्ज यही बनता है कि हम हमेशा आपको अप टू डेट रखते हैं कि कहां क्या गतिविधियां होने वाली है, पहले से अलर्ट कर देते हैं कि मौसम का मिजाज क्या है, कहां बारिश होने वाली है, कहां तूफान आने वाला है और कब कब कितनी तेज बारिश होगी। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। दिल्ली की जो आबो हवा है, सच बात तो है कि हमेशा दिक्कत परेशानी में हम लोग जी रहे होते हैं। AQI जिसको हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो गिरावट दर्ज की जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कतें परेशानियां महसूस होती हैं। अब आप यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आपसे अगर मैं कहूं कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसमें जिम्मेदार है, मतलब एक से लड़ाई हो चुकी थी, अब तीनों से कुदरती लड़ाई है ये। दरअसल वहां से जो आंधी धूल तूफान आया है उसका फर्क एक्सपर्ट बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दिल्ली NCR में उसका फर्क देखने को मिल रहा है। और ईरान की जो दूरी है मैं आपको बताना चाहूंगा, ईरान से दिल्ली की दूरी 2555 किलोमीटर है, अफगानिस्तान से दिल्ली की दूरी 1055 किलोमीटर है, पाकिस्तान से दिल्ली की दूरी महज 450 किलोमीटर है। और इन सब के पीछे पश्चिमी जो हवाएं हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से दिल्ली NCR में ये फर्क देखने को मिल रहा है। और वहां चूंकि रेगिस्तान है और ऐसा फर्क दिल्ली NCR में जब है तो उसका फर्क यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में बारिश अच्छी हो और जिसकी वजह से उसमें यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक जिसको हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा हो। गुड मॉर्निंग, मैं हूं अगर आपके साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, यानी कि गानों की जो बारिश है उसका अपना ही मजा है। जरा हट के जरा बच के फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर जरूर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: गच लागे, म्यूजिक प्रोड्यूसर थिंकर लिरिसिस्ट अजमेर बलंबिया, म्यूजिक कंपोजर मासूम शर्मा, सिंगर मासूम शर्मा, सॉन्ग नेम इज गच लागे, ऑल योर सुरु शारदा 90.8 FM, सो लेट्स एंजॉय इट।

0: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:53 हो चुके हैं, 14 तारीख है, वक्त का इशारा यानी कि अनुमति ले लेने का, हमारे आसपास क्या खास उसके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है और यही लगातार अपडेट मैं आप तक पहुंचा रहा होता हूं। मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों पर अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो रूट को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है और इसे PIB के सामने मंजूरी के लिए रखा जा रहा है और आने वाले समय में वहीं ग्रेटर नोएडा में जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, उनकी सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी शुरू कर दिया गया है। और हमारे आसपास खास ये हमें देखने को मिलता है कि अभी तक हम मुंबई की सड़कों पर डबल डेकर बस देखा करते थे और अब तो नोएडा की सड़कों पर ये बसें हमें देखने को मिल रही हैं। एक अच्छा ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आप उसमें सफर करना चाहते हैं, कहीं आना जाना नहीं हो, मतलब टाइम पास करना चाहते हैं तो जरूर सवारी का लुत्फ उठाएगा। और क्या खबर है? और खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहे हैं कि समय बदल गया है, वक्त बदल गया है, क्लास में बच्चों को अब जलील नहीं कर सकते। हाँ, एक मतलब टीवी चैनल ने जलील लिखा है और हमने इसको अपने सूत्रों से पता किया, वो जलील होता है, जलील और जलील में जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ क्या लगना चाहिए? जलील मतलब उनको परेशान नहीं कर सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते, ये मतलब एक बहस के आधार पर उन्होंने कहा है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं।
1: हाँ, काश ये हमारे समय में भी पता चल गया होता कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं।
0: हम तो बहुत पिटा करते थे, माशा मालो मालो हड्डी, क्या बोलते थे, खाल तुम्हारी हड्डी हमारी।
2: किशोर कुमार,
1: वक्त इशारा, मैं होता हूँ आपसे 9:11 मतलब अनुमति ले रहा हूँ, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। ब्यूटीफुल ट्रैक रिक्रिएट पन्ना की तमन्ना, आय है
3: आर्टिस्ट दीप शिखा रैना, म्यूजिक डायरेक्टर अनुराग अभिषेक। चलिए सुनते हैं पन्ना की तमन्ना है, सिर्फ और सिर्फ सुरू शारदा 90.8 FM पर। पन्ना की तमन्ना है।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान चल रहा है, तो इसी क्रम में सुनते हैं सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम जो आपको टीबी के प्रति जागरूक करेगा और आप इस बीमारी से बच पाएंगे और अपने परिवार को बचाएंगे, साथ ही साथ औरों को भी जागरूक करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम जो आधारित है 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर।

0: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 FM से। मैं शशि कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर मुहिम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कई, और इसी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं टीबी के बारे में। और आज हम आए हैं शारदा हॉस्पिटल के डॉट सेंटर में, जहाँ पर हम बैठे हैं दीपक कौशिक जी के सामने। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ सेवाएं वो शारदा हॉस्पिटल के डॉट सेंटर में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कौशिक जी, सबसे पहले आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं सभी आपके श्रोतागण है सभी का धन्यवाद करता हूँ।
0: बिल्कुल, और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो शारदा हॉस्पिटल का डॉट सेंटर है, यहाँ पर आप किस पद पर कार्यरत हैं और क्या क्या कार्य आप यहाँ पर देखते हैं, और किस तरह से जो डॉट सेंटर है वो लोगों की सेवा कर रहा है।
1: सर, मेरा नाम दीपक कौशिक है और मैं बेसिकली यूपी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूँ, और शारदा हम विजिट के लिए यहाँ आते हैं, डॉट सेंटर को रन कर रहे हैं क्योंकि अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के यहाँ डॉट सेंटर चलता है। विगत 2011 से हम लोग यहाँ पे हैं जो डॉट सेंटर को हम लोग चला रहे हैं, और इन 2011 से हमने कई हजार मरीज जो टीबी से ग्रसित थे उनको हमने ठीक किया है। और देखा जाए तो टीबी एक जो पहली सदी में एक महामारी के रूप में जानी जाती थी, लोग उसको लाइलाज बीमारी के रूप में बताते थे, लेकिन जैसे जैसे डॉट्स आया, पहले हमने RNTCP से स्टार्ट की, RNTCP के बाद में हमने इसको अब NTP में ला के आए, अब एलिमिनेट की तरफ हमने इसको प्रोग्राम को चलाया हुआ है। तो हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य विजन रखा है कि हमें अपने देश से टीबी को जड़ से भगाना है, टीबी फ्री इंडिया करना है। तो इसी मुहिम में हम सभी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं,
0: और इसी उद्देश्य को लेकर के टीबी कैंपेन भी चलाया जा रहा है। तो इस कैंपेन को सफल बनाने में आप और आपका जो स्टाफ है और आपका जो स्वास्थ्य विभाग है, किस तरह से योगदान कर रहे हैं ताकि हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाए।
1: हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कि एक विश्व से टीबी को जड़ से समाप्त करने का एक लक्ष्य रखा था, 2030 एलिमिनेट करना है, टीबी फ्री करना है इंडिया को, बट थोड़ा सा अभी ये महामारी एक कोविड के रूप में हमारे पास आई, जिसने हमारे 3 साल इसमें हमारे खराब हो गए, लेकिन फिर भी हमने अब महामारी से अपने आप को उभरते हुए इस टीवी प्रोग्राम पे हमने अपना फोकस रखा हुआ है कि हम आज भी अपने जो माननीय मोदी जी का विजन है 2025 तक टीवी फ्री करने का, तो उसको हम सुचारू रूप से सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं हम इसको जड़ से समाप्त करेंगे भी। और रही बात हमारे योगदान की, तो देखिए सर, हम तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं जी, तो हमारा तो मेनली उद्देश्य ही है कि टीवी को जड़ से समाप्त करना। तो सभी हमारी पूरी टीम, आशा, आंगनवाड़ी और आपका जितने भी MOs हैं, CHOs हैं, सुपरवाइजर्स हैं, और भी जो भी हेल्थ से हमारे रिलेटेड, चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सभी लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं कि कैसे ही हम इसको बीमारी को जल्द से जल्द अपने टीबी इंडिया से बाहर कर सके।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने आशाओं की बात की, हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उनकी बात की, तो ये किस तरह से इस अभियान में अपना योगदान दे रही हैं?
1: सर, इसमें अभी हमको ना 100 दिवसीय टीबी सघन रोगी खोज अभियान हमने सरकार ने चलाया हुआ है। उस 100 दिवसीय में क्या है कि हम 1 जनवरी से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है अपने प्रदेश में, और उसको हम 24 मार्च तक हम इसको चलाएंगे। तो इस 24 मार्च तक हमको वेनरेबल जो पॉपुलेशन है उसको स्क्रीनिंग करना है, क्योंकि जब हम स्क्रीन करेंगे तो उसमें हमें टीबी के पेशेंट मिलेंगे। तो हमारी जो आशाएं हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी हैं, जो हमारे CHOs हैं, वो घर घर जा रहे हैं, पेशेंटों के उनके कॉन्टेक्ट से मिल रहे हैं, उनको स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अगर उनमें कहीं ना कहीं ये 5 लक्षण आपको दिखाई देते हैं, 2 हफ्ते से लगातार खांसी किसी अगर हमें स्क्रीनिंग चिन्हित किए हुए व्यक्ति में दिखाई देते हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो, रात पर कमर पर पसीने का ज्यादा आना हो, वजन अचानक उसका गिर गया हो, वजन बहुत ज्यादा कम हो गया हो, और लो ग्रेड फीवर, जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे उसको बुखार और अधिक होता चला जाता है, उसको हम लो ग्रेड फीवर कहते हैं। अगर ऐसे और किसी के बलगम में खून का आ रहा हो, किसी की बॉडी में कहीं कोई गांठ दिखाई दे रही है, तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित करते हैं। और अभी 100 दिवसीय सघन उसमें क्या कह रहे हैं, वेनरेबल पॉपुलेशन में हमने 60 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उनको भी हमने क्या कह रहे हैं, वेनरेबल पॉपुलेशन में चिन्हित किया है। स्मोकिंग करने वाले, एल्कोहल कंज्यूम करने वाले, वो भी व्यक्ति हमारी सस्पेक्ट वाली श्रेणी में आते हैं, और ऐसा व्यक्ति जिसका BMI 18.5 से कम हो, उस व्यक्ति को भी हम क्या कह रहे हैं इसमें वेनरेबल, उसमें हम क्या चिन्हित करते हैं। कुछ आपका डायबिटीज से ग्रसित पेशेंट, क्योंकि जो डायबिटीज जो होती है वो भी कहीं ना कहीं एक जननी होती है हर बीमारी की। तो हमने उस डायबिटीज पेशेंट को भी हमने चिन्हित करा है अपनी इस स्क्रीनिंग में। तो ज्यादा से ज्यादा हम उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। चिन्हित करने के बाद में हम उनका क्या कह रहे हैं, उचित माध्यम के द्वारा, प्लेटफॉर्म के द्वारा, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो पीपीपी मॉडल पे, तो उनमें हम उनकी जांचें करवा रहे हैं स्क्रीनिंग करने के बाद। तो अगर पेशेंट पॉजिटिव आता है तो देन उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने उनके लक्षणों के बारे में बताया, और जो हमारी आशाएं हैं या अपने आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ती हैं उनका नाम लिया, और भी हमारे जो CHO हैं, ये तो अपनी भूमिका बखूबी निभा ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो आम इंसान है, कहते ना कोई भी अभियान जब तक सफल नहीं होता जब तक हर इंसान उसमें अपना योगदान ना दे, तो हमारा जो आम इंसान है वो किस तरह से इस अभियान में अपना योगदान दे सकता है ताकि हम TB मुक्त भारत बना सके।
1: सर जैसे कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि 5-6 लक्षण मेन लक्षण होते हैं, 2 हफ्ते से लगातार ज्यादा खांसी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बुखार ठीक नहीं हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति जिसको क्या कह रहे हैं लगातार उसका वजन कम होता जा रहा हो, बलगम में खून आ रहा हो, या रात में कमर पर ज्यादा पसीने आ रहे हों, या किसी को गांठें दिखाई दे रही हों बॉडी पे, तो ऐसा व्यक्ति, आम लोग भी हम ऐसे व्यक्ति देख सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग वातावरण में कहीं ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है। अगर हम उनको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है कि पड़ोस में कोई खांस रहा है, 2 हफ्ते से ज्यादा खांस रहा है, तो हम उसको एक सलाह दे सकते हैं कि आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं जहां फ्री में आपकी जांचें होंगी। अगर उसमें टीबी आपको पॉजिटिव पाया जाता है तो आपको फ्री में ही उसका इलाज भी मिलेगा, और साथ में सरकार जो एक इलाज के साथ में निक्षय पोषण योजना के तहत उसको 3,000 रुपये, अभी पहले क्या था 500 रुपये पर मंथ था, लेकिन सरकार ने उसको भी बढ़ा दिया, उसको 1,000 रुपये पर मंथ कर दिया। तो जो ड्यूरिंग है आपका इलाज के दौरान 6 मंथ का इलाज होता है, तो उसमें उसको पेशेंट को 6,000 रुपये भी मिलते हैं।
0: तो सर ये तो निक्षय पोषण जो पोर्टल है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है, टेस्ट के जरिए ये पुष्टि भी हो जाती है कि भाई आपको टीबी है, तो उस दौरान जरूरत पड़ती है उसको अच्छे पोषण की, तो क्या क्या उसको खाना चाहिए उसके बारे में भी आप सही जानना चाहिए।
1: जी जी, देखिए टीबी का जो पेशेंट होता है अल्टीमेटली ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो कोई भी रोग उसको बड़ी जल्दी घेर लेता है। तो जो टीबी के पेशेंट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट्स का लेना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग मांसाहारी हैं तो मांस से ही आपको क्या कह रहे प्रोटीन मिलेगा। दाल है हमारी, अंकुरित करके दालें खाइए, चने खाइए, आप पनीर ले सकते हैं, और जो भी क्या कह रहे प्रोटीन जिसमें दूध आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, तो जो भी प्रोटीन फुल क्या कह रहे आपकी डाइट में उसको ज्यादा से ज्यादा शुमार करिए। तो जब आप प्रोटीन युक्त अगर डाइट लेंगे तो पेशेंट का इम्यून जो पावर है वो स्ट्रांग होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन अपने उसमें आहार में वो सम्मिलित करें जिससे कि इस बीमारी को जल्दी से वो भगा सके।
0: बहुत से टीबी के मरीज ऐसे हैं जो सक्षम हैं, जो आपने बताया कि प्रोटीन युक्त आहार उनको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन हमारा जो ग्रेटर नोएडा है यहाँ पर प्रवासी मजदूर बहुत ज्यादा रहते हैं, घनी बस्तियां हैं, अब ऐसे में अगर उनको टीबी हो जाता है तो पोषण की बड़ी दिक्कत रहती है, कैसे एक तो मजदूरी मिली ना मिली, तो ऐसे में क्या उनके लिए कोई ऐसी कोई योजना है या कोई ऐसे लोग हैं इस योजना से जुड़े हुए जो उनकी मदद कर पाए?
1: देखिए मलिन बस्तियां हमेशा हमारी प्रायोरिटी पे रही हैं और हम समय समय पर मलिन बस्तियों में जाके कैंप भी लगाते हैं, वहाँ स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करने के बाद उनकी निःशुल्क जाँचें करवाते हैं। जाँच करवाने के बाद अगर टीबी रोगी पाया जाता है पॉजिटिव तो सरकार उनको निश्चय पोषण योजना, एक निश्चय पोषण योजना सरकार ने चला रखी है, उसके माध्यम से सरकार उनको 1,000 रुपये DBT के माध्यम से उनके डायरेक्ट बैंक में उनके खाते में वो 1,000 रुपये देती है, और वो जब तक इलाज उसका चलता है जब तक सरकार हर महीने प्रति उसमें क्या कह रहे उनको 1,000 रुपये देती है।
0: ये योजना इसके अंतर्गत जो निक्षय मित्र हैं वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो ऐसे अगर हमारे कोई सुनने वाले हैं वो भी इस अभियान में आगे आना चाहते हैं, सक्षम हैं लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं परोपकार की भावना है, दूसरों का भला चाहते हैं, तो किस तरह से इसमें अपना योगदान कर सकते?
1: सर जैसा कि आपने पहले भी कहा कि कोई भी योजनाएं सरकारी योजनाएं जब तक फलीभूत नहीं हो सकती, जब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकती, जब तक उसमें आम लोगों की भागीदारी ना हो, तो ये निक्षय मित्र जो कॉन्सेप्ट है ये सरकार क्या कह रहे आम लोगों की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है निक्षय मित्र कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो हमारे क्या कह रहे जनप्रतिनिधि हो, हमारे कोई अफसर हो, क्योंकि हमारे तो राज्यपाल जी ने इसका शुभारंभ किया था निक्षय मित्र बनाने का। तो मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना में जुड़े। निक्षय मित्र वो व्यक्ति हो सकता है जो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए टीबी रोगी को उस इलाज के दौरान उसकी हालचाल पूछे, उसको खान पीन की भी अगर वो व्यवस्था कर सकता है, एक निक्षय पोषण पोटली बोलते हैं उसको हम, तो वो निक्षय पोषण पोटली भी उसके इलाज के ड्यूरिंग उसको देता रहे। और सबसे बड़ी बात है उसका मोरल, जो उसको बार बार पूछ के उसका जो मोरल को हाई करता रहे कि भाई अगर बीमारी है आपको, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और बीच बीच में उसको बताता भी रहे, क्योंकि ये भी एक निक्षय मित्र की मैं समझता हूँ कि एक उसका दायित्व है, ये टीबी की बीमारी स्प्रेड ना हो तो टीबी के मरीजों को ये भी समझाए वो कि भाई आप हमेशा छींकते वक्त खांसते वक्त अपने मुंह पे कपड़ा रखें, इधर उधर ना थूके, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू शराब ना खाए पिए, जिससे कि ये बीमारी अपना विकराल रूप ना ले सके।
0: कहने का मतलब यह है कि जो निक्षय मित्र हैं वो टीबी पेशेंट का हालचाल पूछे, उनका मनोबल भी उड़ाते रहे, साथ ही साथ उनको कुछ सावधानियां भी बताते रहे ताकि वो इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पा जाए। अब बात आती है कि कोई भी व्यक्ति हमारी आपकी बात सुन करके रेडियो के माध्यम से निक्षय मित्र बनना चाहता है तो कहां पर जाके संपर्क करें?
1: सर, निक्षय मित्र कोई भी व्यक्ति अगर बनना चाहता है तो वो जितने भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जहां भी डॉट सेंटर्स हैं, वो वहां जाके सिर्फ मिल सकता है हमसे। और एक आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर अपना उसको देना है, हम उसका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से उसको क्या कहते हैं अपने निक्षय उस पर रजिस्टर्ड कर देंगे और वो निक्षय मित्र के रूप में हमारा वर्किंग कर सकते।
0: बिल्कुल, तो हमारे जो भी सुनने वाले हैं अगर अपना योगदान इस अभियान में देना चाहते हैं तो जैसा सर ने बताया है उसके जरिए आप निक्षय मित्र बन के किसी का भला कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और सर अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपके पास पेशेंट भी आते हैं और वो उन्होंने टीबी को हराया भी होगा, तो हम कुछ ऐसे जो टीबी चैंपियन है उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि वो पहले बहुत परेशान थे लेकिन अब वो सामान्य जीवन जी रहे हैं आराम से, तो उनके बारे में कुछ बताइए।
1: जी बिल्कुल सर, क्योंकि बातें करें तो मैं 2004 से इस जॉब में हूँ और 2004 से ही मैं क्या कहते हैं टीबी के पेशेंट देख रहा हूँ और हजारों पेशेंटों को मैंने अपने सामने ठीक होते हुए देखा है। और एक टीबी का रोगी जब आता है तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वो खटिया पे ही लेटा हुआ आता है और जब वो अपना डॉट्स का पूरा इलाज लेता है तो वो एक स्वस्थ जीवन जीता है और कुछ सावधानियों के साथ में। जैसे अभी अगर मैं एक उदाहरण दूं कि अगर कपड़ा है कोई आपकी शर्ट है और शर्ट पर एक ही शर्ट है, आप पे कोई ऑप्शन है ही नहीं दूसरा, तो करते क्या है कि शर्ट अगर कहीं फट गई तो उसमें क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। अगर हम उसी सिलाई को सहेज के रखेंगे, यानी कि उसको हम अपनी शर्ट का ध्यान रखेंगे, तो वो जीवन पर्यंत आपकी शर्ट चलती रहेगी। तो ऐसी हमारे टीबी का मरीज है, टीबी का मरीज अगर अपने एक बार ग्रसित होने के बाद पूरा इलाज लेता है और अपने वो शरीर के लिए कुछ सावधानियां बरतता है तो वो अपना एक सुरक्षित और सामान्य जीवन जी सकता है। और ऐसे बहुत हजारों मरीज हैं जो आज सामान्य जीवन जी रहे हैं, पहले टीबी से ग्रसित थे, आज वो सामान्य जीवन जीते हैं और वही लोग दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, वही लोग आगे बढ़ के, क्योंकि जिन्होंने इस दर्द को झेला है वो जब ये दवाइयां खा के वो स्वस्थ हुए हैं तो उन्होंने जो सामने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो उनको समझाते हैं वो लोग। तो यही लोग हमारे जो टीबी चैंपियन है सर, तो ये लोग कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार की योजना है टीबी फ्री इंडिया करने की, उसमें ये भी लोग हमारे बहुत बड़े मदद।
0: बिल्कुल सर, तो बहुत सारी बातें आज रेडियो के माध्यम से आपने हमें बताई, हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे और जो टीबी पेशेंट है हो सकता है वो भी सुन रहे होंगे, बिल्कुल जागरूक रहेंगे। चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि अभी जो टीबी कैंपेन चल रहा है इसको सफल बनाने के लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: सर मैं यही कहना चाहूंगा, एक तो टीवी के जो भी मैंने अभी पूर्व में लक्षण बताए थे उन लक्षणों को सभी लोग जो हमारे श्रोता हैं वो सभी लोग इसको जान लें, और जानने के बाद अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने सराउंडिंग में दिखाई देता है, रिश्तेदारी में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके क्या कहते हैं पड़ोस में हो या कहीं पे भी ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उसे चिन्हित करें, और चिन्हित करने के बाद में उस व्यक्ति को ये समझाएं कि भैया लाइलाज बीमारी नहीं है, आप इसके लिए पहले सरकारी जो केंद्र है डॉट सेंटर है उस पर आप जाइए, जाने के बाद वहाँ निशुल्क जांचें होती हैं। अगर आपको ये पॉजिटिव आ भी जाता है, टीबी रोग आ भी जाता है, तो आप घबराइए मत, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसमें पूर्णतः क्या कहते हैं आपको इलाज लेना है जितनी भी अवधि का वो डॉट सेंटर में बताते हैं। तो दो तरीके की हमारे यहाँ टीबी अभी मुख्यतः चल रही है, एक सिंपल टीबी और एक एमडीआर टीबी। उसमें क्या होता है मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस हो जाता है, तो कुछ ड्रग्स हैं जिससे वो रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसका भी कारण ये कहीं ना कहीं वो डिफॉल्टर पेशेंट रहा होता है या कहीं ना कहीं वो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जो पहले से वो एमडीआर का पेशेंट था। तो यही है कि सभी लोग जागरूक बने, इन चीजों को देखें और हमेशा छींकते वक्त खांसते वक्त अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको भी जागरूक करें कि भैया समाज में आपको तो इलाज लेके ठीक होना ही है लेकिन आपको दूसरे को भी बचाना है, दूसरे व्यक्ति को आपसे ग्रसित नहीं होना, ये चीजें आप थोड़ा सा वो जागरूकता सभी लोग फैलाएं। और जैसे कि आपने बताया ही है पूर्व में कि भाई आम लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होगी तभी हम इस रोग को हरा पाएंगे। ऐसा कोई सरकारी तंत्र नहीं है कि वो स्वयं इसको हरा देगा। जब तक आम मानस घर घर में प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, अपने दायित्व को नहीं समझेगा, जब तक हम टीबी को नहीं हरा पाएंगे, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदारी करें।
0: बिल्कुल सर, जो भी इस अभियान से जुड़े हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जो सूचना लोगों तक पहुंच रही है वो भी अपनी भागीदारी निभाएं तो हम टीबी मुक्त भारत बना सकते हैं। एक और चलते चलते बात सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि हमारा जो शारदा विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है सुनो शारदा 90.8 FM, ये भी जन जागरूकता फैला रहा है टीबी के लिए, तो इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अभियान में जो अब तक भूमिका रही है शारदा रेडियो स्टेशन की?
1: सर, शारदा रेडियो स्टेशन की जो भूमिका रही है वो काबिले तारीफ है। मैं दिल से क्या सभी आपके श्रोताओं और आप चैनल के सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही जागरूकता प्रोग्राम आप चलाते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इस जागरूकता से बहुत से लोगों का जीवन बच सकता है। तो ऐसे ही मैं आपको धन्यवाद पुनः देते हुए कि आप ऐसे जागरूकता अभियान टीवी है या और भी डिसीज को लेकर जो भी जागरूकता अभियान है वो हमेशा चलाते रहे।
0: बिल्कुल सर, आगे भी ऐसे ही अभियान चलते रहेंगे। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
4: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अचानक।
5: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
4: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
5: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
4: है?
5: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 FM से मैं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90

0: पॉइंट एट एफएम और स्मार्ट मिलकर मुहिम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कही, जिसका फोकस टीवी पर है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि हमें देश को टीवी मुक्त करना है, तो इसी क्रम में हम आपको जागरूक कर रहे हैं। बार बार रेडियो के जरिए आप तक बहुत सारी जानकारियां पहुंचती हैं और आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि टीवी मुक्त भारत बनाना हम सबका कर्तव्य है। और इसी क्रम में आज हम आए हैं शारदा हॉस्पिटल और शारदा हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड HOD डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे टीवी के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका सुनो शारदा 90.8 एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे विचार श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: बिल्कुल सर, और हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो टीबी है आखिर ये है क्या, क्यों लोग इससे इतना डरते हैं?
1: देखिए, इस सवाल का जवाब देना या समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब यूं समझिए कि ये टीबी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जैसे अभी कोविड आया कुछ दिन में जो इवॉल्व हुआ, ये हजारों साल से चली आ रही है। पहले इसको एक आनुवंशिक बीमारी माना जाता था। रीजन ये था कि एक परिवार में अगर किसी एक सदस्य को हो गई तो ये हम जानते हैं कि एक से दूसरे में फैलने में देर नहीं लगती, और इलाज थानी इलाज की क्वेश्चन तो बाद में उठता है। पहले किसी को यही नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम है ना, तो लोग बोलते थे कि एक ही परिवार के सभी लोगों में तो ये आनुवंशिक बीमारी है। लेकिन बाद में एक जो लैंडमार्क आया ट्यूबरक्लोसिस में, दैट वाज 1882, जब एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, तब उन्होंने ये डिक्लेयर किया एक कॉन्फ्रेंस में कि नहीं, ये एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है, ये तो एक इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है। इन्फेक्शियस प्रॉब्लम जो एक कीटाणु से होती है, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, उनके बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये चीज़ तो अब क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो अभी सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है, और उस बैक्टीरिया का नाम हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यूजुअली सबसे ज़्यादा फेफड़ों को प्रभावित करती है, और एक इंसान जिसके फेफड़े पहले से प्रभावित हैं, जब वो खांसता है, जब वो छींकता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया वो हवा में रिलीज करते हैं, और उसी हवा को जब कोई दूसरा एक इंसान एक सांस के रूप में अंदर लेता है तो उसमें भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। मतलब इन्फेक्शन के चांसेस, ये हम ऐसे बोलते हैं कि टीबी होने के चांसेस, कि जितने लोगों के शरीर में बैक्टीरिया जाता है उन सभी को टीबी नहीं होती। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो इम्यूनिटी उन बैक्टीरियाज को मार गिराती है, और जिनकी इम्यूनिटी कुछ कम होती है, या बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर में जाते हैं, या बैक्टीरिया बहुत एक टर्म यूज़ करते हैं कि विरुलेंट होते हैं, तो उनको उस पर्टिकुलर इंसान की जो इम्यूनिटी है वो किल नहीं कर पाती, और उनमें वो टीबी का फिर प्रोग्रेशन हो जाता है, खांसी होना, बुखार होना, फिर ये सब कुछ चल जाता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। जब वो एक इंसान कहीं दूसरी जगह घूमने फिरने के लिए जाता है, किसी मीटिंग के अंदर में खांसता छींकता, वो दूसरे लोगों को फैलाता है, और ये चेन चलती रहती है।
0: बिल्कुल सर, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि जो टीबी है वो आनुवांशिक बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती है, ये एक जैसा कि सर ने बताया बैक्टीरिया से ये बीमारी फैलती है। अब बात आती है सर यहाँ पर लक्षणों के बारे में, तो किस तरह से कोई आम आदमी पहचान ले कि हो सकता है इनको टीबी हो गई है, तो ऐसे कौन कौन से वो सामान्य लक्षण होते हैं?
1: देखिए, वैसे जब बोलते हैं मेडिकल साइंस में 2+2=4 रेयरली होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे लक्षण हैं जो जाने जाते हैं कि टीबी के मरीज में होते हैं। जैसे अभी हम बोलते हैं कि अगर खांसी है किसी इंसान को और उसको 2 हफ्ते ऐसे ज़्यादा हो गए हैं, तो हम ये बोलते हैं कि एक सस्पिशन होना चाहिए कि ये टीबी हो सकती है। टीबी के मरीज को बुखार आता है, जिसको हम बोलते हैं लो ग्रेड इवनिंग राइज फीवर, मतलब बुखार बहुत तेज़ नहीं होता लेकिन शाम के टाइम यूजुअली बढ़ने लगता है, और जो पेशेंट है वो बोलते हैं कि जी हरारत सी होने लगती है रात में। कुछ मरीज ये भी शिकायत करते हैं कि भी रात में उनको पसीने आते हैं, मरीज को भूख लगनी कम हो जाती है जिसकी वजह से उसका वजन कम होना, कभी कभी खांसी के साथ में ब्लड आना। तो ये जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए, ये जो लक्षण बताए, ये यूजुअली तब होते हैं जब फेफड़े वाली टीबी होती है, और मोस्ट ऑफ केसेस में फेफड़े वाली टीबी, और उसी के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कोई सुन के ये बोले, कई बार मरीज ये आते हैं कि जी मुझे तो खांसी हुई नहीं, मुझे तो हल्का बुखार आया था, डॉक्टर अब आप बोल रहे हो कि भी ये टीबी कैसे हो सकती है, मुझे तो खांसी कभी हुई नहीं है ना, दुनिया बोलती है कि खांसी होती है ना, ये कुछ ये बोलते हैं जी मुझे तो बुखार आया ही नहीं है ना। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं जितने सिम्टम्स जितने लक्षण का मैंने नाम लिया वो सभी एक साथ हों या सभी मरीजों में, किसी किसी मरीज में ये सब एक साथ देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी मरीज आते हैं कि जी वजन कम हो रहा है, सिर्फ वजन कम हो रहा है, खांसी भी नहीं है, बुखार भी नहीं है ना, लेकिन पता चला कि उसने बताया हमें कि पिछले 2 महीने में मेरा 5, 6 या 7 किलो वजन कम हो गया है। तो कई बार सिर्फ वजन ही कम होना एक लक्षण होता है, कभी कुछ भी नहीं होता। पेशेंट आता है जी वो खांसा मैंने और खांसी में ब्लड आ गया मेरे। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लक्षण सभी मरीजों में देखने को मिले, कभी कभी एक ही लक्षण होता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ लक्षण बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि PTP।
0: तो सर ये तो बात रही TB के लक्षणों की, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो प्रारंभिक जांच होती हैं, टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए TB की पुष्टि की जाती है।
1: एक तो जो डॉट सेंटर है वो गवर्नमेंट के द्वारा हर 5 किलोमीटर के रेडियस में बनाए गए हैं, जो सभी जगह उपलब्ध हैं। अगर खुद को भी ये लगता है कि लक्षण TB जैसे हो सकते हैं तो आप वहाँ डायरेक्टली जाके भी वो जाँच करा सकते हैं। और जाँच होती है कि सिंपल बलगम देना होता है, और बलगम में एक बोलते हैं कि Sputum-4 AFB एसिड फास्ट बैसेलाई या ZN स्टेनिंग, जिसमें हम बैक्टीरिया जो TB के बैक्टीरिया हैं उनको स्टेन करके देखने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा साथ के साथ अगर फैसिलिटी है तो छाती का एक्सरे करा सकते हैं, और उसके बाद में तो फिर एडवांस टेस्ट बहुत सारे टेस्ट हैं। जैसे हम अभी टर्शियरी लेवल पर काम कर रहे हैं तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी हैं, हम पता करते हैं, बलगम भी नहीं आ रहा तो उसके लिए भी बहुत कुछ हम कर पाते हैं। लेकिन जो 2 मेन टेस्ट हैं जिनकी हम बात करते हैं, जो यूजुअली प्राइमरी लेवल के जो केयर होता है वहाँ पे भी होते हैं, वो एक्सरे चेस्ट, छाती का एक्सरे और बलगम की जांच TB के कीटाणुओं के लिए।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही है TB की जांच की, अब बात कर लेते हैं अगर किसी भी व्यक्ति की TB की जांच में पुष्टि हो जाती है TB की कि आपको TB का संक्रमण हो चुका है, तो इसका इलाज क्या है?
1: देखो इलाज है, सबसे पहली बात तो कुछ लोग का तो क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगी, इसका इलाज है भी कि नहीं। हाँ मैं बोलता हूँ इलाज है। सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट द्वारा हर एक इंसान के लिए फ्री में जो मेडिसिन है वो उपलब्ध है। जैसे मैंने बोला कि हर 5 किलोमीटर के रेडियस में गवर्नमेंट ने एक डॉट सेंटर डेवलप करने की कोशिश की है, और हैं भी वो यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में भी डॉट सेंटर है जहाँ से हम TB की दवाई मुफ्त में देते हैं। और यहाँ तो खैर हमारा वो एक मेडिकल कॉलेज का डॉट सेंटर है, तो हम यहाँ तो हम बिगड़ी हुई TB की दवाई भी जो बहुत कॉस्टली होती है, और उनमें एक मेडिसिन तो आपको जान के ताजुब होगा कि एक टैबलेट की कीमत 10,000 रुपये होती है ना, और वो भी फ्री में दी जाती है हमारे डॉट सेंटर के माध्यम से। और ये है कि आलमोस्ट 97-98% रिकवर्ड ईजिली हो जाते हैं। 1-2% केसेस में कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं, या फिर कई बार मेडिसिन बंद करनी पड़ जाती है कि भाई उसका लीवर ख़राब होने लगा या पेशेंट को उल्टी आने लगी, वो चीज़ भी मैनेजेबल है। मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा श्रोताओं को कि बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं कि मैंने दवाइयाँ स्टार्ट तो की थी लेकिन मुझे उल्टी आने लगी, जी मुझे सूट नहीं की मैंने तो छोड़ दी वो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है, आप डॉक्टर के पास आइए, जो साइड इफेक्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन होती है, तो अल्टीमेटली वो भी कंट्रोल हो जाएगी।
0: बिल्कुल, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, अगर वो नियमित रूप से दवा खाते हैं तो इस बीमारी से बच सकते हैं। आगे हम बात करना चाहेंगे, जो भी पेशेंट हैं उनको TB हो गया है, उनका इलाज चल रहा है, दवाई वो खा रहे हैं, तो उस दौरान उनका जो पोषण है, उनकी जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए?
1: अभी जब मैंने आपसे जिक्र किया कि सैकड़ों हजारों साल पुरानी TB है, उस समय हमें ये भी नहीं पता था कि ये एक इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, उस समय इसका ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं था, तो उस समय हुआ करते थे सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का मतलब होता है कि शहर के बाहर, आबादी के बाहर एक खुली हवा में एक शेल्टर बना दिए जाते थे जहाँ सभी TB के पेशेंट रहते थे। और कॉन्सेप्ट ये होता था कि अच्छी धूप, अच्छी हवा और अच्छा खाना पीना किसी हद तक उनको ठीक करेगा। तो वही है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ पर पोल्यूशन कम हो। यहाँ पे हम जो पौष्टिक खाने की बात करते हैं, एक तो हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं और एक इसमें करते हैं स्पेशली हाई प्रोटीन डाइट। तो पहले मैं हाई प्रोटीन डाइट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से प्रोटीन हमें मिलता है। एक तो जितने भी दालें होती हैं, सब टाइप की दालें, चाहे मसूर की दाल, उड़द की दाल, काली दाल, पीली दाल, उन सबको खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मांस, मछली, ये सब ये प्रोटीन के पार्ट हैं। बैलेंस डाइट की बात करते हैं, इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर में कुछ विटामिन भी हों, तो हम यहाँ एडवाइस करते हैं कि कुछ फ्रूट्स लें। और ये पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए या इसकी डाइट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी रुपये हर महीने उन मरीजों को देती है जिनको TB पाई जाती है।
0: डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे और श्रोताओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिर में?
1: मैं देखिए ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट एक्सपायर होने जा रहा, मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूँ, लेकिन टीबी के पेशेंट को मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, उनके परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है और हम सब समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट तक ले जाएं, उसको पकड़ के उसका इलाज कराएं और ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि अगर उसको आज ठीक नहीं कराया तो वो आपको भी फैलाएगा, कुछ दिनों बाद आप भी उसी प्रॉब्लम से ग्रसित होंगे।
0: डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी आप सुन रहे थे 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगले एपिसोड में फिर से आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2500

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

सुनो शारदा 90.8 FM शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर और लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। तो किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे दुधारू पशुओं की देखभाल की और साथ ही साथ आप मोटे अनाज की खेती यानी कि श्री अन्न की खेती कैसे कर सकते हैं। पहले तो आप करते थे लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आया था जहां पर आपने मोटे अनाज की खेती करना छोड़ दिया, लेकिन आज के समय में मोटे अनाज की बाजार में बहुत मांग है और अच्छी कीमत में आप इनको बेच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दुधारू पशुओं की। जी हाँ किसान मित्रों, हमारे जो पशु हैं और हमारी जो खेती है वो एक दूसरे के पूरक हैं। खेती से हमें 3 महीने में 6 महीने में उत्पादन मिलता है, लेकिन पशुओं से कुछ ना कुछ हमें मिलता रहता है और साथ ही साथ हमारे जो दुधारू पशु हैं वो घर का खर्च चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जब कभी खेती में नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई पशुओं के द्वारा हो जाती है। तो इस तरह से खेती का और पशुपालन का तालमेल चलता रहता है और जो किसान भाई खेती के साथ साथ पशु पालन करते हैं तो उनको खेती में भी घाटा नहीं होता है, फायदा ही फायदा होता है। तो किसान मित्रों, दुधारू पशु हमारी आय को दोगुना करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ पशु देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं, लेकिन कई बार पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं जिसके कारण हमारे जो किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में पशुपालकों को पशुओं को रोगों से बचाने के लिए पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। अगर हम पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोगों के बारे में बात करें तो वो है गलाघोटू, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी और तिल्ली या बागी रोग शामिल है। तो किसान मित्रों, अगर आपको इन बीमारियों का कोई भी संक्रमण आपके पशुओं में दिखे तो आप तुरंत पशुओं के डॉक्टर से बात करें। किसान मित्रों, खुरपका मुंहपका रोग जिसको संक्षिप्त रूप में FMD कहते हैं, ये बीमारी गाय भैंस में बड़ी शीघ्रता से फैलती है और एक प्रकार के विषाणु से उत्पन्न होती है। ये रोग गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों और सूकरों में भी हो जाता है। इस बीमारी में जीभ के नीचे मसूड़ों, थनों और खुरों में छोटे आकार के छाले फपोले पड़ जाते हैं। पशुओं को तेज बुखार होता है और जुगली करना पशु बंद कर देते हैं। दूध उत्पादन भी कम हो जाता है, पशुओं के मुंह से लार गिरने लगती है और पशुओं के थनों पर छालों से कभी कभी थनेला की बीमारी हो सकती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये रोग स्वस्थ पशु के बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से और लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु बीमार पशु की लार, मुंह, खुर और थन में पड़े फफोलों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो किसान मित्रों, अब बात आती है कि आप अपने दुधारू पशुओं को इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। तो उसका सही और सीधा रास्ता ये है कि आप अपने सभी पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव के लिए सर्वोत्तम है। इसीलिए पशुओं को FMD के वर्ष में 2 बार टीके अवश्य लगवाने चाहिए। तो अपने पशुओं का टीकाकरण करवाने के लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय जा सकते हैं, वहां पर बात कर सकते हैं और अपने पशुओं का टीकाकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा बीमार हो जाने पर रोगग्रस्त पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। बीमार पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े से दूर रहना चाहिए। बीमार पशुओं के आवागमन पर रोक लगा देनी चाहिए। रोग से प्रभावित क्षेत्र से पशु नहीं खरीदना चाहिए। पशुशाला को साफ सुथरा रखना चाहिए। संक्रमित पशुओं को पूर्ण आहार देना चाहिए जिससे उनको खनिज और विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से मिलती रहे और समय समय पर पशु चिकित्सक का परामर्श लेते रहना चाहिए। तो इन सब बातों का किसान मित्रों आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो पशु हैं वो रोग मुक्त रहेंगे और आपको आर्थिक लाभ पहुंचाते रहेंगे। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही कि हम अपने दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश कला।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बलराम बैसला से ये उपदेश। किसान मित्रों, मोटे अनाज जिनसे आप बखूबी परिचित होंगे और पहले आप इनको खूब करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब आपने इनको करना छोड़ दिया। लेकिन वर्तमान समय की हम बात करें तो आजकल बाजार में हर जगह, हमारे देश के अलावा विदेशों में भी मोटे अनाजों की मांग बढ़ गई है। तो ऐसे में अगर आप मोटे अनाज की खेती करते हैं तो एक तो आप स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे, इनका सेवन करेंगे, दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे और साथ ही साथ आपकी आमदनी भी अच्छी होगी, क्योंकि मोटे अनाजों की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। अब किसान मित्रों, मोटे अनाज स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज मोटे अनाजों को सुपर फूड और पोषक अनाज कहा जाता है। किसान मित्रों, बाजरा जैसे मोटे अनाज को भविष्य का अनाज तक कहकर संबोधित किया जा रहा है। इससे बखूबी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोटे अनाज स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से आने वाले भविष्य में कितना महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। भारत में बाजरा, ज्वार, सवा, कुटकी, कोदो, रागी, कंगनी, चीना, कुट्टू और चोलाई प्रमुख रूप से मोटे अनाज या यूं कहें श्री अन्न पैदा किए जाते हैं। अब किसान मित्रों, बात करेंगे हम कि मोटे अनाजों की इतनी आजकल मांग है, आखिर क्या वजह है, क्या ऐसे गुण इनमें पाए जाते हैं जो कि बाजार में इनकी मांग बहुत ज्यादा है, लोग अब बहुत ज्यादा मोटे अनाजों को खाना पसंद कर रहे हैं। तो ये बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं प्रीति चौधरी।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रीति चौधरी से ये देशभक्ति रागनी। और इस रागनी से पहले हम बात कर रहे थे कि आजकल जो श्री अन्न है, मोटे अनाज है, उनकी मांग क्यों बढ़ रही है, क्यों लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्यों उनको खरीद रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मोटे अनाज हैं वो गुणों की खान है और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनमें पाया जाने वाला रेशा जो खूब मात्रा में मौजूद होता है। इस रेशे के घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। घुलनशील रेशा पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को बेहतर बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि महीन अनाज खाने और व्यायाम से दूर रहने के चलते जो कब्जियत और शरीर के फूलने जैसी बिन बुलाई बीमारियां हम झेलते हैं, मोटा अनाज उनका सटीक उपचार है। गेहूं में मिलने वाला प्रोटीन, ग्लूटेन इन अनाजों में नहीं होता, इसीलिए इनसे पाचन तो अच्छा होगा ही। इसके साथ ही किसान मित्रों, आपके फायदे की बात ये है कि जो मोटे अनाज हैं, अगर आप इनकी खेती करते हैं तो हमारी अन्य जो खेती हैं उनकी अपेक्षा इनमें लागत कम आती है। तो ये भी आपके लिए एक फायदा रहेगा कि आपकी लागत मोटे अनाजों को करने में कम आएगी और आपको फायदा ज़्यादा होगा। तो आप ज़रूर मोटे अनाज की खेती करिए ताकि आप भी स्वस्थ रहें और जहां तक ये श्री अन्न पहुंचेगा आपके द्वारा तो वो भी स्वस्थ रहें और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो। और कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप ऐसी खेती करें जिसमें आपको फायदा ज्यादा हो और खेती में लागत कम आए। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मोटे अनाज की खेती की। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। किस्सा रहेगा महाभारत का और गायक कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे महाभारत के किस्से से ये रागनी। गायक कलाकार थे लोकेंद्र सिंह। इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर होगी इसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: ना छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। यह आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

बेटी वाले को बहका दिया कि अच्छी दावत करनी चाहिए शादी में। तो दोस्तों शादी में जो दावत हुई उसमें खूब जोर लगा दिया बेटी वाले ने मेहरबानों, और बारात विदा होने वाली थी, दुल्हन को सजाया गया। आज उर्मिला सखी सहेलियों के बीच में किस तरह से बैठी हुई है, सुनिए यहाँ के बोल क्या सके?

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा।
0: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
2: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचे मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधु, और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है और ये भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहां से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहां से ऑन एयर कर रहे हैं जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है लाउड स्पीकर 90 FM का। आइए सुनते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम।
3: हिंसा को नो

0: सभी श्रोतागणों को हमारा नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम हिंसा को नो में आप सबका स्वागत है और ये कार्यक्रम हम स्मार्ट की सहायता से प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंसा कई बारी हमारे आसपास इस तरह छिपी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। हमारे समाज में कई सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिससे हम सामाजिक जामा पहनाकर लोगों पे थोप देते हैं। इसमें भले ही सामने वाले के आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ रही हों, कुछ ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों के बारे में हम आप सबके साथ एक नाटक साझा कर रहे हैं जिसका शीर्षक है सिर्फ औरतों के लिए ही रीति रिवाज क्यों। हम आम तौर पर देखते हैं अपने आसपास, पड़ोस में या अपने घर पर ही, या हमारी खुद की भी यही धारणा होती है कि हिंसा का मतलब मारपीट, धक्का मुक्की या गाली गलौज ही माना जाता है। परंतु ऐसा नहीं है। हिंसा के कई प्रकार होते हैं। कई हिंसा तो ऐसी भी होती हैं जिसे हम अपने जीवन का हिस्सा मानकर उन्हें सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। उस हिंसा को हम सामाजिक जामा पहनाकर दूसरों पर थोपने का दृढ़ प्रयास भी करते हैं। इसी हिंसा के क्रम में आता है रीति रिवाज। कई बार रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो मन को लुभावने लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं और हम हंसी खुशी उसे अपनाते हैं। पर कई बार कुछ ऐसे रिवाज भी होते हैं जो कष्टदायक होते हैं, पर लोग जबरदस्ती औरतों पर इन रीति रिवाजों को थोपने की कोशिश करते हैं और कई बार सफल भी हो जाते हैं। इसी संदर्भ में हमारी आज की कहानी है सिर्फ औरतों के लिए ही रीति रिवाज क्यों। ये कहानी है सुनीता की, जिसकी शादी को 2 साल हो रहे हैं। उसके परिवार में उसका पति राजू, सास चंपा और ससुर भोला है। सुनीता अपने घर में अभी नवविवाहित दुल्हन की भांति ही रहती है। वो अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती है। एक दोपहर सुनीता अपनी सास चंपा से कहती है,
1: माँ जी कल रात में आप बहुत खांस रही थी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी?
2: हाँ हाँ ठीक है, वो थोड़ी खांसी चढ़ गई थी।
1: माँ जी आपने दवा ली?
2: हाँ मैं तो दवा ले ही लूंगी, पर तुम नहीं आई ना एक भी बार देखने।
1: माँ जी मैं आने वाली थी पर आपके कमरे में पापा जी थे इसलिए नहीं आई।
2: अच्छा चलो ये तो ठीक है, कम से कम तुमको ख्याल है कि ससुर के सामने नहीं जाते, अच्छा लगा हमको। अच्छा ये बताओ राजू कहाँ है?
1: माँ जी वो तो ऑफिस गए हैं।
2: सुबेरे से ही नहीं दिखाई दे रहा वो तो?
1: हाँ आज जल्दी ऑफिस जाना था उनको।
2: इतना सुबेरे क्यों, कोई जरूरी काम था क्या?
1: हाँ माँ जी वो मीटिंग थी उनकी आज।
2: अच्छा अच्छा, खाना खा के गया है?
1: हाँ सुबह ही नाश्ता बना दिया था तो खा के गए हैं, आप भी खाना खा लीजिए।
2: अरे नहीं नहीं हम अभी खाना नहीं खाएंगे, आज मन नहीं कर रहा है अभी खाना खाने का, इतनी गर्मी है कि पूछो नहीं।

0: कह दिया ना कि नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है, और इतनी भी गर्मी नहीं है जो तुम सूट पहन के नाचोगी। दो दिन की आई लड़की सारा शर्म लाज घोल कर पी गई है। ससुर हो भसुर हो कोई भी आए ऐसे ही मुंह खोल के दिखा देना है, और अब तो सूट भी पहनने की डिमांड कर रही है।
1: माफ करिएगा माँ जी, गलती हो गई।
0: गलती नहीं हो गई, तुम हो ही बेशरम। पूरे खानदान में सूट कोई नहीं पहनता है, लेकिन महारानी को सूट पहनना है। और तो और लाज है अभी घोल कर पी जानी है इस लड़की को।
1: माँ जी सच में गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया।
0: ध्यान रहता कहाँ है तुम्हारा। ऐसे ही कल इतना तेज तेज आवाज में हंस रही थी कि आवाज बरामदे तक जा रही थी। देखो मुझे नहीं पता तुम अपने मायके में कैसे रहती थी, पर यहाँ पे जैसे दुल्हने रहती हैं वैसे ही तुमको रहना पड़ेगा, समझी तुम।
1: ठीक है माँ जी।
2: क्या हो रहा है माँ, क्यों डांट रही हो भाभी को।
0: अरे तुम्हारी भाभी है ही उस लायक, तो डांट खाएगी नहीं। तुम इसकी छोड़ो, अपनी बताओ कैसे हो। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ पानी पियो।
2: अरे मैं बढ़िया हूँ और पानी भी पी लूंगा। पहले तुम ये बताओ ना, किस बात पर बहस हो रही थी तुम्हारी।
0: अरे कुछ नहीं बेटा, इन महारानी को ज्यादा ही गर्मी चढ़ गई है, बहुत बदतमीजी कर रही हैं अभी ये।
2: अरे माँ कैसी बातें कर रही हो तुम, वो बहू है तुम्हारी।
0: हाँ तो मैं भी तो कह रही हूँ, बहू है बहू की तरह रहे।
2: अरे किया क्या है ये तो बताओ।
0: अब एक गलती हो तब बताऊँ ना।
2: अच्छा अभी क्या हुआ है वो ही बता दो।
0: अरे मैडम कह रही हैं कि इनको गर्मी हो रही है साड़ी में, अब इनको सूट पहनना है।
2: तो साड़ी पहनने में सच में गर्मी लग रही हो तो, और सूट पहनने में क्या दिक्कत है।
0: बात बस सूट तक की नहीं है बेटा, अभी तुम्हारे पापा आए थे तो महारानी बिना घूंघट के ही उनके सामने खड़ी हो गई थी, और कल तो एकदम हद ही हो गई। पता है कल इतनी जोर जोर से हंस रही थी कि बरामदे तक आवाज जा रही थी। अब तुम बताओ, बाहर का घर है, आवाज यहाँ तक बाहर तक जाएगी तो कैसा लगेगा।
2: अरे तो क्या हो गया घूंघट नहीं डाला तो, ऐसा तो नहीं है ना कि बदतमीजी से बात कर रही हो या फिर झगड़ा कर रही हो आप लोगों से। और हंसी का क्या है माँ, वो तो नेचुरल है, उस पे कैसे कंट्रोल कोई कर सकता है।
0: अरे औरत है वो, उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिसको उसे पालन करना ही पड़ेगा, ये गांव है कोई शहर नहीं है तुम्हारा।
2: अच्छा माँ एक बात बताओ, लड़का जब पैदा होता है तो नंगा पैदा होता है, तो क्या लड़कियां कपड़े पहन के पैदा होती हैं?
0: पगला गए हो का, दोनों ही लड़का हो चाहे लड़की दोनों ही नंगे पैदा होते हैं।
2: तो जब भगवान जी लड़का लड़की में कोई भेद नहीं करते तो हम क्यों करें। उनको अगर लड़कियों को घूंघट में ही बनाना होता तो पैदाइश के टाइम ही घूंघट में बनाते।
0: तुम दो अक्षर पढ़ लिए हो तो ज्यादा ज्ञान ना बघारो, हमारी जो रीति रिवाज है वो करना ही पड़ेगा, और सबको करना पड़ेगा, तुम्हारी भी बहुरिया आएगी तो उसको भी करना पड़ेगा, समझे।
2: माँ ये जो भी रूढ़ीवादी रीति रिवाज है ना, वो औरतों के लिए बस घुटन ही लाती हैं, और ये सब समाज के द्वारा बनाया गया है, नहीं तो भगवान ने सबको एक समान बनाया है। मुझे गर्मी लगती है तो मैं हाफ पैंट में घूम सकता हूँ, पर उधर भाभी को 6 मीटर की साड़ी और पता नहीं क्या क्या पहनना पड़ता है, ये कहाँ का न्याय है। उनको गर्मी नहीं लगती क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कपड़े ही ना पहने, पर कुछ तो सहूलियत उनको भी मिलनी चाहिए, उन्हें भी तो सही से जीने का हक है।
0: बेटा सब ठीक है, पर अपने घर तो यही रीति रिवाज है ना कि बहू बेटियां जो होती हैं वो घर में रहें, घूंघट में रहें, खाना पानी बनाएं, और घर के मर्दों के बीच में ना बोलें, और ये सारी चीजें हमारे पुरखों के जमाने से चली आ रही हैं। तो इसको हम कैसे बदल दें बताओ। अब उनको हम कह दें कि जाके वो सबके सामने मुंह उघार के नाचें।
2: माँ जरूरी नहीं जो चीज कभी नहीं हुई वो कभी हो ही ना। और माँ तुम सोचो ना, वो भी इंसान है, उन्हें भी दिक्कत होती है, और उन्हें भी हक है अपनी मर्जी से चीजें खाने का पहनने का। औरत मतलब अभिशाप थोड़ी होता है, वो तो वरदान है जिसे ये शक्ति है कि वो एक जीव पैदा कर सके। मर्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण महिलाएं हैं और हम उन्हें ही महत्व नहीं देते।
0: हाँ बेटा मुझे समझ में आ गया है, तुम्हारी ये जो भी बातें थी वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। सुनीता भी तो आखिर इंसान है, उसको भी हमारी और तुम्हारी तरह गर्मी लगती होगी, और उसे भी तो अपनी बातें रखने का अपने विचार रखने का अधिकार है, भगवान ने उसको भी मुंह दिया है तो वो भी तो बोल सकती है। ठीक ठीक अब मैं एकदम समझ गई बेटा, अब मैं बहुरिया से बोल दूंगी कि वो सूट आराम से पहन सकती है, और मैं अब उस पे बंदिशें भी इतनी नहीं लगाऊंगी।
2: ये हुई ना बात, तो चलो मेरे साथ एक बार कहो,
3: रीति रिवाज के नाम पर महिला

0: बाधाओं की जीवन रेखा न जोड़ो, चलो उठो तोड़ो ये दीवारें और समानता से नाता जोड़ो।
1: सुनीता के जीवन में तो परिवर्तन आ गया उसके देवर पंकज के कारण। पंकज ने न केवल सुनीता के जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश की बल्कि अपनी माँ चंपा की भी रूढ़िवादी विचारधारा से हटकर जीने की राह समझाई। हमें भी खुद में, अपने घरों में, आस पड़ोस में ये कोशिश रखनी चाहिए कि हमारे जो रीति रिवाज हैं, वो जबरदस्ती किसी पर भी ना थोपे जाएं। हमारे रीति रिवाजों को दूसरों पर ऐसे ना थोपे जिससे वो बेड़ियों में जकड़ जाएं। और ये रीति रिवाज सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों थोपे, उन्हें भी जीने का हक दे और हमारे साथ सब मिलकर कहें हिंसा को नो।

अभी आप सुन रहे थे हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला लाउड स्पीकर 90 FM का। ये विशेष कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत आप सुन रहे हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम आप समय दर समय यहां से सुनते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-4060-205 पर, और इसी नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM का हम धन्यवाद करते हुए आपसे मैं अब अनुमति लेना चाहता हूं। बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने
1: निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनुषादा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादन 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का प्यार भरा नमस्कार।
3: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्रोता मित्र इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं अजीत।
2: तो करते हैं शुरुआत आज की विचार से जो हमें भेजा है
3: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती जी ने। आप लिखते हैं,
2: वो रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं जिनमें न हक हो न शक हो, न जात हो न जज्बात हो, सिर्फ अपनेपन का एहसास ही एहसास हो।
3: क्या बात है, सिर्फ अपनेपन का ही एहसास हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले और उत्तर देने वाले श्रोताओं के नाम। हमारे एक विद्यार्थी श्रोता करण बिंद लिखते हैं,
2: मैं करण बिंद कक्षा 9वीं का छात्र हूँ और आपका उमंग कार्यक्रम प्रतिदिन सुनता हूँ। आजकल आपके कार्यक्रम में जो श्रृंखला समाचार पत्रों पर चल रही है मुझे काफी पसंद है। इसलिए भी है क्योंकि मैं खुद समाचार पत्र बचपन से ही पढ़ता हूँ और उमंग कार्यक्रम में ये रोचक जानकारी काफी अच्छी लग रही है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद करण। हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप आज भी समाचार पत्र पढ़ते हैं।
2: इंटरनेट के इस युग में अब अधिकतर लोग समाचार सुनते हैं, समाचार पत्र बहुत कम लोग पढ़ते हैं।
3: ये बात तो है
2: जी। अपने पढ़ने की ये सुंदर आदत बनाए रखिए, पुस्तकों से बेहतर साथी कोई और नहीं है।
3: जी हाँ, क्या बात है, पुस्तकों से बेहतर साथी कोई और नहीं है। अगला संदेश हमें मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीवा का। आप लिखते हैं, कहानी नादान कछुआ दिल को छू गई।
2: और इसके साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
3: आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह के प्रश्न और उनके उत्तर। हमारा पहला प्रश्न था, दशराज्य युद्ध क्या था और ये किनके बीच लड़ा गया था।
2: तो इसका सही उत्तर है साथियों, दशराज्य युद्ध उत्तर वैदिक काल में राजा सुदास और उनके विरोधी 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। और हमारा दूसरा प्रश्न था, आर्किमिडीज किस नगर के रहने वाले थे।
3: तो इसका उत्तर है श्रोताओं, आर्किमिडीज साइराक्रूज नगर के रहने वाले थे जो कि सिसिली में है यानी यूनान में। और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए जो हमने आपसे पूछा था कि सैनिक जब आर्किमिडीज के पास पहुंचा तो वे क्या कर रहे थे।
2: तो इसका सही उत्तर है, सैनिक जब आर्किमिडीज के पास पहुंचा तो वो नदी के रेत पर ज्यामितीय आकृतियां बनाकर एक समीकरण ढूंढ रहे थे। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न,
3: डॉक्टर कलाम की उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें उन्होंने पायलट के पद पर नहीं चुने जाने की घटना का वर्णन किया है।
2: तो इसका सही उत्तर है साथियों, उस पुस्तक का नाम है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू एक्शंस। और अब हमारा अंतिम प्रश्न सुनिए,
3: भारत ने पहली बार किस उपग्रह को SLV-3 द्वारा लॉन्च किया था।
2: तो इसका सही उत्तर है साथियों, भारत के द्वारा पहली बार लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम है रोहिणी। और अब प्रस्तुत है हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला
3: ये भी जानिए। श्रोताओं, ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में आज हम जानेंगे पश्चिमी संगीत के महान संगीतकार लुडविग वॉन बीथोवन के जीवन की एक विशेष बात जो मेरे लिए, आपके लिए और सबके लिए बन सकती है प्रेरणा का कारण।
2: जी, 7 मई 1824 वियना की एक संगीतमय शाम, शहर की संगीत प्रेमी जनता वियना के रॉयल कोर्ट थिएटर में बैठी हुई एक खास मौके का इंतजार कर रही थी। ये मौका था लुडविग वॉन बीथोवन की 9वीं सिम्फनी के प्रीमियर का, जिसे संगीत की दुनिया में आज भी असाधारण घटना के तौर पर देखा जाता है।
3: मित्रों, बीथोवन पूरे 12 वर्षों से स्टेज पर भी दिखाई नहीं दिए थे। पूरे 12 वर्षों बाद वे उस दिन स्टेज पर अपनी रचित सिम्फनी प्रस्तुत करने के लिए मौजूद थे।
2: श्रोताओं, सिम्फनी यूरोपीय वृंदवाद्य की विशिष्ट शैली का नाम है। ये शब्द यूनानी भाषा का है जिसका अर्थ है सहवादन, यानी साथ साथ बहुत सारे वाद्य यंत्रों को बजाना।
3: श्रोता मित्रों, इस विधा में हर वादक का अपना अपना काम होता है। तो आगे चलते हैं, बीथोवन स्टेज पर थे। कुछ देर में वे संगीत निर्देशक के तौर पर जनता की ओर पीठ करके खड़े हुए और वृंद वादन शुरू किया। आपको बता दें कि पहली बार सिम्फनी में गायन भी शामिल किया गया था।
2: दर्शकों के सामने पीठ किए बीथोवन ने संगीत को जादुई अंदाज में आगे बढ़ाया। उनका पूरा शरीर थिरक रहा था, संगीत की लहर में उनके हाथ चल रहे थे, वे एक तरह से संगीत में डूबे हुए थे। श्रोताओं को तब बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तब भी उनके हाथ लहरा रहे थे।
3: इसके बाद उनके समूह की अकेली महिला गायिका कैरोलिन ने आगे बढ़कर उनका चेहरा दर्शकों के सामने कर दिया ताकि वे तालियों की गड़गड़ाहट को देख सकें।
2: अजीत जी, मुझे आपकी दो बातें बहुत अजीब सी लगी। आपने कहा ताकि वे तालियों की गड़गड़ाहट को देख सकें। गड़गड़ाहट तो देखी नहीं जाती, ये तो सुनी जाती है। और आपने ये भी बताया कि शो खत्म होने के बाद भी वे अपने हाथ लहरा रहे थे, भला ऐसा कैसे?
3: विमलेश जी, यही तो जानने की खास बात है। श्रोताओं, आपको बता दें, दरअसल बिथोवन तब तक पूरी तरह बहरे हो चुके थे।
2: जी।
3: 18 वर्ष की आयु से ही उनका बहरापन बढ़ने लगा था और 40 वर्ष के होते होते वे पूरी तरह से बहरे हो चुके थे।
2: ओह, ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि जिसे सुनाई तक नहीं देता वो भला संगीत की रचना कैसे कर सकता है और संगीत में निर्देशन कैसे दे सकता है।
3: यही तो बात है विमलेश जी, जो उनके जीवन की है और हमें प्रेरणा देती है। श्रोताओं, बिथोवन ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं अपने बहरेपन को कमजोरी नहीं लेकिन चुनौती समझता हूँ। मेरी कमजोरी ही मेरी ताकत है।
2: क्या बात है।
3: मुझे लगता है कि जब हम अपनी कमजोरियों को ताकत बना लेते हैं तो और बेहतर काम कर सकते हैं।
2: वह क्या बात है अजीत जी। तो श्रोताओं, ये सच है कि जब हम अपनी किसी भी प्रकार की दुर्बलता को चुनौती समझकर पूरे मनोबल से समस्याओं का निरंतर सामना करते हैं तो असंभव लगने वाली बातों को भी संभव बना सकते हैं।
3: जी हाँ। तो श्रोताओं, आशा है कि लुडविग वॉन बिथोवन पर यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो जरूर लिखें।
2: बिल्कुल।
3: और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है,
2: सिम्फनी किसे कहते हैं और बिथोवन की सिम्फनी का कार्यक्रम

भारतवर्ष में ज्ञान विज्ञान, साहित्य, शस्त्र शास्त्र और ऐसी ही अनेक विधाओं के महान ज्ञाताओं ने जन्म लिया है। ऐसे ही एक ज्ञानी थे आचार्य सुश्रुत। प्राचीन काल के अन्य ऋषि मुनियों की तरह ही इनके विषय में भी तथ्यपूर्ण साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। इसके अनेक कारण रहे हैं, किंतु फिर भी अगर हीरा कोयले की खान में दबा भी रहे तो भी वो अपनी चमक दमक से लोगों का ध्यान आकर्षित कर ही लेता है।

ऐसे ही एक कोहिनूर थे, आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि विश्वामित्र उनके पिता थे और इनकी माता का नाम माधवी था। उनका बाल्यकाल वाराणसी में गंगा की पावन लहरों से खेलते हुए बीता था। बड़े होने पर ऋषि विश्वामित्र सुश्रुत को लेकर अपने श्वसुर और काशी के राजा दिवोदास के पास पहुंचे। दिवोदास को भगवान धन्वंतरी का अवतार कहा गया है।

0: महाराज काशीराज को विश्वामित्र का प्रणाम।
1: चिरंजीवी हो विश्वामित्र, कहो कैसे आना हुआ?
0: महाराज, आप तो जानते हैं कि मैंने राजकाज का त्याग कर दिया है। इस भौतिक संसार में अब मेरी रुचि नहीं रही, अतः चिरंजीवी अष्टक को राजपाट सौंप दिया है। किंतु सुश्रुत अभी छोटा है। मुझे लगता है कि यदि यह आपके आशीर्वाद की छाया में पलेगा तो इसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से हो सकेगी। इसलिए इसे आपके पास लाया हूं।
1: विश्वामित्र जी,
0: जी
1: ये आपने बहुत अच्छा किया। हम भी बहुत समय से आपसे यही कहना चाहते थे। आपने तो हमारा हृदय प्रसन्न कर दिया। आप निश्चिंत होकर वन को प्रस्थान करें और तपस्या करके पुण्य लाभ अर्जित करें। हम सुश्रुत की शिक्षा और लालन पालन में कोई कमी नहीं आने देंगे।
0: धन्यवाद महाराज।
2: और इस प्रकार सुश्रुत की शिक्षा अपने नाना के यहां शुरू हुई। बालक सुश्रुत पढ़ाई में बहुत तेज था। उसने जल्दी ही वेद और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, शास्त्र शिक्षा भी प्राप्त की। लेकिन उसकी रुचि तो आयुर्वेद, विशेषकर शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी में थी। एक दिन
3: अरे क्या हुआ? इसकी तो उंगली कटकर अलग हो गई है। कुछ करना होगा। अरे रो मत, तुझे कुछ नहीं होगा।
4: मेरी उंगली।
3: तेरी उंगली को कुछ नहीं होगा, ये वापस जुड़ जाएगी।
4: उंगली,
3: तू चिंता मत कर। देख, मैं ये दवा का घोल और पट्टी लाया हूँ। हाथ आगे करो। अरे कुछ नहीं।

होगा। ये मैंने कटी हुई उंगली को खोल में डुबाकर वापस अपने स्थान पर लगाया। कुछ नहीं होगा। अब इस पट्टी से उसे अच्छी तरह बांध देता हूँ। जल्दी ही उंगली ठीक हो जाएगी। ये दवा अपने साथ ले जाओ। रोज इसे इस जुड़ी हुई जगह पर लगा लेना। और हाँ, ध्यान रहे, उंगली को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना मत।

0: विरेचक को विश्वास नहीं था कि उसकी उंगली वापस अपने स्थान पर जुड़ सकती है। आसपास खड़े लोगों ने और बच्चों ने तो सुश्रुत का मजाक भी उड़ाया, लेकिन विरेचक की आंखों में आशा की किरण थी, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। इसीलिए उसने एक सप्ताह तक उस हाथ से कोई काम नहीं किया और एक सप्ताह बाद
1: सुश्रुत, ओ सुश्रुत,
2: क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो?
1: मित्र, चिल्ला नहीं रहा हूँ, खुशी से पागल हो रहा हूँ। तुमने सच कहा था, देखो तो मेरी कटी हुई उंगली अपने स्थान पर एकदम ठीक ढंग से जुड़ गई है।
2: अरे वाह,
1: अब तो मैं इसे हिला डुला भी सकता हूँ। सुश्रुत, तुम तो सचमुच बहुत बड़े वैद्य हो, लेकिन ये संभव कैसे हुआ?
2: अरे भाई, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। हमारा शरीर ही हमारा चिकित्सक होता है। जब शरीर का कोई अंग कट जाता है तो उसके तंतु अलग हो जाते हैं, किंतु एकदम से मरते नहीं हैं। यदि समय रहते उस अंग को सही प्रकार से वापस लगा दिया जाए तो वे तंतु फिर से जुड़ जाते हैं।
1: भाई, मेरी समझ में तो तुम्हारी ये बातें नहीं आती हैं। लेकिन एक बात है, तुमने अभी से ऐसा संभव कार्य कर दिया है तो बड़े होकर तुम तो मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर दोगे।
2: मित्र, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि भगवान कम से कम मुझे मरते हुए आदमी को बचाने की योग्यता प्रदान करें।
1: देखना, भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे।

विरेचक की बात सच निकली। बालक सुश्रुत जितनी तेजी से बड़ा हो रहा था, उससे भी अधिक तेजी से उसका ज्ञान बढ़ रहा था। और होता भी क्यों ना, आखिर उसके नाना ने ही उसको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी, जो स्वयं भी चिकित्सा शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। कुछ समय बाद औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें राज्य के सर्वाधिक योग्य गुरु के पास भेजा गया। वहां भी उन्होंने अपनी विद्वता की धाक जमा दी।

0: शिष्यों, तुम्हारा अध्ययन पूरा हो चुका है। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अच्छा बताओ कि हड्डी के जुड़ने में औषधि का कितना योगदान होता है?
1: गुरुजी, औषधि के बिना तो हड्डी के जुड़ने की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
2: जी हाँ गुरुजी, हमारा भी यही उत्तर है।
3: नहीं गुरुदेव, मेरा मत इनसे अलग है। हड्डी को जोड़ने का कार्य तो हमारा शरीर स्वयं करता है। औषधि का कार्य है हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया को गति देना।
0: एकदम सही। अच्छा, अब तुम में से कोई और बताए कि एक शव की परीक्षा करने के लिए सर्वप्रथम कौन सी प्रक्रिया करनी होगी?
3: गुरुदेव, मैं बताऊं?
0: ठीक है, कोई और नहीं बता पा रहा तो तुम ही बताओ।
3: जी गुरुदेव, शव को बहुत सी घास फूस से अच्छी तरह ढककर बहते पानी में रखना चाहिए।
0: ठीक, किंतु क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करने से मृत शरीर की त्वचा शरीर से अलग हो जाती है और शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन भली प्रकार किया जा सकता है।
0: वाह सुश्रुत, वाह, तुम धन्य हो। केवल रटने मात्र से विद्या नहीं आती, जैसा बाकी शिष्यों ने किया है। सिखाए हुए पाठ को ठीक से समझना भी होता है, और तुमने यही किया है।
3: जी
0: सुश्रुत, तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम शल्य क्रिया में निश्चय ही बहुत ऊंचा नाम पाओगे।
3: धन्यवाद गुरुदेव।
0: मेरा आशीर्वाद है कि लोग शल्य चिकित्सा जगत में तुम्हारा ही नाम लेंगे।
3: गुरुदेव,
0: आज मैं तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित करता हूँ।
3: मैं धन्य हुआ गुरुदेव, मैं कृतकृत्य हुआ।

गुरु जी की बात सत्य हुई। सुश्रुत उस युग के सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सक के रूप में विख्यात हुए। उनकी कीर्ति संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गई। उन्होंने अपने गुरु और नाना देवोदास से जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसी के सूत्रों का संग्रह है सुश्रुत संहिता। इसका केंद्रीय विषय तो शल्य चिकित्सा ही है, किंतु आयुर्वेद के विभिन्न पक्षों की सटीक जानकारी भी इसमें मिल जाती है।

0: आठवीं शताब्दी में इसका अनुवाद अरब वासियों ने अपनी भाषा अरबी में भी किया, जो किताब सुश्रुत तथा किताब शाने हिंद के नाम से किया गया। उन्होंने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत से अनुसंधान किए और नवीन जानकारियां एकत्र की। उन जानकारियों को वे नए चिकित्सकों को प्रदान करते थे।
1: सभी उपस्थित चिकित्सकों को सुश्रुत का प्रणाम।
2: प्रणाम।
1: मित्रों, आप सब शल्य चिकित्सा के विद्वान हैं और अपने अपने क्षेत्र में दक्ष हैं। मैंने भी कुछ अनुसंधान किए हैं और उनसे कुछ महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए हैं।
3: क्षमा कीजिए, हमें पता चला है कि आपने चिकित्सा शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी है। हम सबसे पहले उसी के विषय में जानना चाहते हैं।
4: जी, जी, हाँ, कुछ बताइए।
1: अवश्य, जी हाँ, अवश्य। मैंने एक शल्य चिकित्सा की पुस्तक की रचना की है, जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। इसे मैंने संस्कृत भाषा में ही लिखा है। इसमें मुख्य भाग में 120 अध्याय हैं। इनमें शल्य चिकित्सा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन है। दूसरा भाग परिशिष्ट रूप में है। इसे मैंने उत्तर तंत्र का नाम दिया है।
5: उत्तर तंत्र?
1: जी।
6: इस उत्तर तंत्र में क्या बताया गया है?
1: देखिए आचार्य जी, इसमें शरीर की चिकित्सा का ज्ञान कराया गया है। फिर भी नित्य नई बातें सामने आती रहती हैं।
6: ये तो है,
1: जिनका वर्णन इस पुस्तक में नहीं हो सका है।
6: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: आज की इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य इन्हीं नवीन जानकारियों को आपस में बांटना है। आपके पास कुछ नई जानकारी अथवा प्रश्न हैं तो कहिए।
3: माननीय सुश्रुत जी, कृपया एक समस्या का समाधान कर दीजिए।
1: अवश्य।
3: हम बहुत ध्यान से शल्य चिकित्सा करते हैं, किंतु फिर भी बहुत से रोगी मर जाते हैं। इसका क्या कारण है?
1: आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है आचार्य जी। इसका सबसे मुख्य कारण है संक्रमण।
3: संक्रमण? किंतु हम तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं।
1: हाँ, लेकिन एक कमी रह जाती है।
6: वो क्या?
1: वो कमी है हमारे उपकरणों में। अच्छी तरह धोने के बाद भी उनमें कुछ कीटाणु जीवित रह जाते हैं। इसलिए उपकरणों को पूरी तरह संक्रमण रहित करने के लिए उन्हें तेज आग में तपाना चाहिए।
6: अच्छा, एक बात और बताइए आचार्य
1: जी।
6: कभी कभी रक्त का थक्का जमने से भी बहुत से रोगियों की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए क्या किया जाए?
1: उसका तो बहुत ही सरल उपाय है। रक्त को जमने से रोकने के लिए हम विषहीन जोंकों का प्रयोग कर सकते हैं।
5: विषहीन
6: जोंकों का प्रयोग?
1: हाँ, विषहीन जोंकों का प्रयोग। ये जोंकें अपनी लार के साथ एक स्राव छोड़ती हैं, जिससे रक्त में थक्का नहीं जम पाता।
6: वाह वाह वाह आचार्य सुश्रुत, हम भाग्यशाली हैं कि इस युग में पैदा हुए।
3: हाँ, हाँ।
6: जिसमें आप जैसे चिकित्सक का साथ मिला।
1: धन्यवाद।
6: निश्चय ही आपने आज हमें बहुत सी नई जानकारियां दी हैं, जो हमारे बहुत काम आएंगी। हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
1: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और आज संसार के सभी चिकित्सक डॉक्टर वैद्य जानते हैं कि जोंकों की लार में हेपरिन नाम का एक स्राव होता है जो खून को जमने नहीं देता। सुश्रुत ने विभिन्न प्रकार की शल्य क्रियाओं में दक्षता प्राप्त कर ली थी। नाक, कान और होठ की शल्य क्रिया का वर्णन तो सुश्रुत संहिता में किया ही गया है।
1: उन्होंने शल्य क्रिया में काम आने वाले 100 से भी अधिक यंत्रों का आविष्कार किया। उन्हीं यंत्रों का विकसित रूप आजकल प्रयोग किया जाता है। वास्तव में सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जा सकता है।
2: इन खूबसूरत कार्यक्रमों के बाद अब सुनते हैं, आइए एक खूबसूरत गीत।

0: आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा प्रसारण का समय यहीं समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और विमलेश को तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना
0: और मंजू कुमारी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
1: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
0: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
1: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
0: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
2: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरी यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा या यूं कहें कि पिचक जाएगा या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाए।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपाली। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। और इसी बीच हमारे से जुड़ी हुई है एक बहुत ही खास हस्ती, जिनका परिचय हम आपसे कराएंगे। परिचय कराने से पहले हम बता देते हैं कि उनको रेडियो की दुनिया का अच्छा खासा अनुभव है, तो मैं अपने श्रोताओं से कहूंगी कि कहीं ना जाएं, उन्हें सुने। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गीतिका उनियाल जी, जो कि FM पर बतौर रेडियो जॉकी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपको कैसा लग रहा है?
2: सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो शारदा 90.8 FM, इसके माध्यम से आज मैं आप सभी के बीच सम्मिलित हूँ, यानी कि रेडियो की इस दुनिया से मेरा संबंध और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि आज के विशेष दिन पर आपने मुझे आमंत्रित किया और आज मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और बहुत ही सुहाना सफर रहा है अभी तक रेडियो की दुनिया में, और उम्मीद करती हूँ कि आगे चलकर भी हम कुछ नया देंगे। हमारा हमेशा प्रयास यही रहना चाहिए।
1: जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। आज हम बात कर रहे हैं रेडियो के बारे में, और रेडियो को जोड़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जैसा कि हमारी थीम भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेडियो एम्पावरिंग वॉइस ऑफ कम्युनिटी। तो मैम, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या AI कम्युनिटी की आवाज को और सशक्त बना सकता है?
2: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, तो उसमें कम्युनिटी रेडियो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और आज के युग में जब हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हर जगह है, तो रेडियो की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कहीं ना कहीं और सशक्त करेगा। सशक्त कहने का मतलब ये है कि हम और भी ज्यादा इम्पावर हो जाएंगे। जहां पहले हम स्ट्रगल किया करते थे कि हम उचित सामग्री इकट्ठा करें और फिर अपनी स्क्रिप्ट बनाएं, स्क्रिप्ट बनाने के बाद फिर प्रॉपर प्रोग्रामिंग करें, फिर उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें या फिर लाइव जाकर अपने प्रोग्राम्स को दें, लेकिन अब चुट्टियों में,

0: अगर अतीत के पन्नों को झांक कर देखें तो हमेशा से ही हमने रेडियो के माध्यम से कंटेंट पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। कंटेंट का अर्थ यहाँ पर है हमारी जो आम जनता है, जिनके लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उन्हीं की बात उन्हीं तक पहुँचानी है, जो मुद्दे हैं उन तक पहुँचाने हैं। तो प्रोग्राम के कंटेंट में इस तरह से फर्क पड़ेगा कि अब हम AI टूल्स के माध्यम से या AI के संपर्क में आने के बाद ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से क्षेत्र में, यानी कि हमारे समुदाय के भी किस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हम उन लोगों तक आसानी से पहुंच पाएंगे जो उस परेशानी से ग्रसित हैं या जो चाहते हैं कि उनकी आवाज आम आवाज बन जाए और सब तक बात पहुंचे। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी।
1: जी गीतिका जी, आपने हमारे लिसनर्स को बहुत जरूरी और बहुत ही बेहतर जानकारी दी है। जैसा कि आप FM रेनबो पर इस समय अपनी सेवाएं दे रही हैं, समुदाय के लोगों से जुड़ रही हैं, अनेक कार्यक्रम बना रही हैं, लोक संस्कृति, रीति रिवाज, देश विदेश से संबंधित कार्यक्रम लोग सुन रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं और आपकी आवाज एक सशक्त माध्यम है। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से हम किसी भी रेडियो प्रोग्राम की स्क्रिप्ट लिखते समय मानवीय संवेदनाओं को समझते हैं, क्या AI भी जब कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो वो मानवीय संवेदनाओं को समझ पाता है?
0: जी, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, AI अगर हम संवेदनाओं की बात कर रहे हैं तो AI हमें सशक्त सिर्फ डेटा देकर बनाएगा।
1: जी,
0: हमारी पूरी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि भावनात्मकता की अगर बात की जाए तो मनुष्य में है। जब मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल टूल्स बना रहा है जो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, ना कि उसको रिप्लेस करेंगे। आपने कभी क्या किसी को सुना है कि उसने अपना ही कॉम्पिटिटर तैयार कर दिया? ऐसा कभी होता नहीं है और कभी होगा भी नहीं। तो AI सिर्फ मदद करने वाला एक ऐसा टूल है जो हमारे समय को कम करेगा, यानी कि जितना समय हम पहले से लगाते आ रहे हैं किसी काम को करने में उसे कम कर देगा। लेकिन जब भावनाओं की बात होती है, ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है, तो मनुष्य के आगे कोई और नहीं, मनुष्य अपने आप में एक ही है और एक ही रहेगा, और उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो वैल्यू सिस्टम है वही रहेंगी जो मनुष्य के पास है। मनुष्य कोई रोबोट नहीं है, मनुष्य एक समय पर एक काम कर पाता है, चीजों का आकलन कर पाता है, सोच पाता है, समझ पाता है, रो पाता है, हंस पाता है। आपने अगर अपने बच्चे के लिए घर पर किसी रोबोट को खरीदा है जो सिर्फ चलता है, नाचता है, गाता है, क्या कभी आपने उसको रोते हुए सुना है? कभी क्या आपने उसको हंसते हुए सुना है? वो तो आप ही के द्वारा चाबी घुमाने पर आपकी भाषा बोलता है, लेकिन आप नहीं बनता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मैम। जैसा कि AI इन दिनों कंटेंट फॉर्मेशन को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम सामुदायिक रेडियो हैं, सुनो शारदा 90.8 FM, हम काम ही समुदाय के लिए करते हैं, लोकल वॉइस को आगे लेकर जाना। हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों पर सरकार गंभीरता से बात करना चाहती है। हम समुदाय की आवाज बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी बीच मेरे मन में एक सवाल आता है कि AI जहां हर तरीके के कंटेंट का निर्माण कर रहा है, क्या लोकल भाषाओं में भी AI अपना कमांड कर पाएगा? कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं ब्रजभाषी बोली जाती है। अगर हमें अपने समुदाय से जुड़ना है तो हम लोकल लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या AI लोकल लैंग्वेज पर कमांड कर पाएगा या कर पा रहा है, और वो कितना समुदाय तक पहुंच पा रहा है, ये आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
0: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब यहाँ पर बात क्षेत्रीय भाषाओं की हो रही है, जैसा कि आपने स्वयं से प्रश्न किया है इस बात में कि हम कम्युनिटीज के लिए काम करते हैं, और कम्युनिटी यानी कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग राज्यों के समुदाय, अलग अलग गांवों के समुदाय स्टेशन हो गए, तो वहां पर क्षेत्रीयता बदलेगी तो भाषा बदलेगी। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है, जब हम अपने जो हमारा प्रदेश है, जो हमारी कम्युनिटी है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे ना तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कनेक्शन के लिए जरूरी है उस भाषा का इस्तेमाल करना अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने कंटेंट में, जिससे कि समुदाय है वो हमसे जुड़े। अगर मैं किसी समुदाय को संबोधित कर रही हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो शायद मैं उन तक पहुंच नहीं पाऊंगी। AI निश्चित रूप से यहाँ मददगार होगा। AI टूल्स का इस्तेमाल कर हम किसी और भाषा में, मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंटेंट ऐसा है जो किसी और भाषा में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट है ना, ये मेरे समुदाय के लोगों के बड़ा काम आने वाला है, तो AI टूल्स को यूज कर उसका इस्तेमाल कर मैं उस भाषा का अनुवाद करवा सकती हूँ। क्षण भर में मेरे पास अनुवाद आ जाएगा, और क्योंकि मैं जानकार हूँ, मैं समुदाय से अपना संबंध रखती हूँ, समुदाय के लोगों को जानती हूँ, उनकी भाषा को जानती हूँ, और मैं फिर उसको अनुदित कर अपनी भाषा में उन तक पहुँचा सकती हूँ।
1: हाँ, तो हम मान सकते हैं कि लोकल भाषाओं में AI अच्छा कंटेंट बना सकता है।
0: जी,
1: मैम, आप हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं और हम चाहते भी हैं कि हमारे समुदाय के लोग जमीनी स्तर पर आपसे जुड़े। मेरा अगला सवाल आपसे है कि कम्युनिटी रेडियो के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं, सीमित संसाधन

0: दिनों में कम्युनिटी रेडियो को रन करना होता है। हम टीम मेंबर्स समुदाय के बीच में जाकर समुदाय की आवाज बनना चाहते हैं। ऐसे में एआई की तकनीक को हम किस तरीके से अपना सकते हैं, क्या इसके लिए किसी ट्रेनिंग का जरूरत है, या हम समुदाय के लोगों के बीच में जाकर कुछ अच्छी स्क्रिप्ट एआई की से बनाकर जो कि लोकल डायलेक्ट में हो उनके बीच पहुंचा सकते हैं, इस बारे में आप मुझे थोड़ा
1: देखिए। जब आपने कहा कि आपको अपने समुदाय से जुड़ना है
0: जी,
1: तो मुझे लगता है कि आधी आत्मीयता तो आपने वही पूरी कर ली। जब समुदाय में यानी कि समुदाय में रहने वाले लोगों से आप जाकर मिले, आपने उनसे वन टू वन टॉक करी, तो आपने कहीं ना कहीं उनसे आत्मीयता वहीं स्थापित कर ली। एआई उनकी मनोस्थिति नहीं जानता है, एआई आपको मदद करेगा, टूल्स मदद करेंगे कि उस क्षेत्र में उस राज्य में क्या क्या परेशानियां हैं। आपके पास हो सकता है सवालों की एक फेहरिस्त जरूर बन जाए, लेकिन सच में वो सवाल या वो मुद्दे उस समुदाय में हैं भी या उस समुदाय को संबोधित करने वाले हैं भी या नहीं है, वो आप समुदाय से बात करके पता करेंगे। तो जो भी आप एआई की मदद से सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं उसका क्रॉस चेक जरूर कीजिए। पूरी तरह से किसी भी उपकरण पर अपने आप को निर्भर कर देना ये गलत होगा। आज के युग में जब व्यक्ति व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, तो आप किसी उपकरण पर विश्वास कर फिर से ऐसे कैसे एक रेडियो प्रोग्राम बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं जो सीधा जुड़ा हुआ है आम जनमानस से।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। जैसा कि हम कोई भी रेडियो कार्यक्रम बनाते हैं समुदाय के लिए, तो हम काफी रिसर्च करते हैं, हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, समुदाय के बीच में जाकर लोगों की बात सुनकर हम स्क्रिप्टिंग करते हैं कि लोगों की असल मुद्दे क्या है जो रेडियो के माध्यम से जाने चाहिए। लेकिन आजकल बहुत तेजी के साथ स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाती है, क्या हमारे प्रोग्रामों की जो क्रिएटिविटी है उस पर एआई का बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया है, या आने वाले समय में एआई ही स्क्रिप्ट लिखेगा, तो फिर रिसर्च करके प्रोग्राम कैसे बनेंगे? आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
1: ये प्रश्न भी आपका बहुत बहुत अच्छा है। एआई स्क्रिप्ट, मैंने फिर कहा कि एआई अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा जो एकदम आर्टिफिशियल है, वो उतनी ही सामग्री आपको देगा जितना उसके परिप्रेक्ष्य में आती है। मैं ये कहती हूँ कि जो दिमाग ईश्वर ने इंसान को दिया है वो शायद इंसान भी मशीन को नहीं दे सकता।
0: जी बिल्कुल,
1: है ना। तो जब हम कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं तो हम उसके कहते हैं ना कि हम किसी चीज के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू दोनों को लेकर आप जब स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं उसके बाद रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद आपको लगता है ये प्रश्न यहाँ पर ठीक नहीं लगेगा। सिर्फ ये मानव जाति के पास ही इस तरीके के गुण मौजूद है कि उसके पास ये शक्ति है कि वो अच्छे और बुरे में से अच्छे को अपने पास रखता है और बुरे को निकाल देता है। एआई आपकी मदद कर सकता है, आपको स्क्रिप्ट दे सकता है, लेकिन फिर आपको पुनः निर्माण अपनी स्क्रिप्ट का, अपने प्रोग्राम का खुद करना होगा। ये मान लीजिए कि आपने अपने किसी साथी से हेल्प मांगी कि मेरी मदद कर दोगे क्या?
0: बिल्कुल,
1: उसने मदद की, पर आपको पूर्ण रूप से भी अपने साथी पर निर्भर नहीं होना है। उसने सिर्फ मदद की है
0: जी,
1: वो आप नहीं है। जिस तरह से दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में एक है, आप मुझ जैसी नहीं और मैं आप जैसी नहीं, तो भला फिर मुझ जैसा एआई कैसे हो सकता है?
0: बिल्कुल,
1: तो कहते हैं ना कि मेरा क्लोन कोई भी नहीं अगर सही मायने में देखा जाए।
0: हाँ, सब अपने आप में
1: पूर्ण है, यूनिक है। तो क्योंकि मुझ जैसा कोई नहीं तो मशीन मेरे जैसी कैसे हो सकती है?
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मशीन मेरे जैसी नहीं हो सकती, इसलिए उस पर हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते।
0: जी मैम, आपने बेहद अच्छी बात कही कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है और कोई किसी का क्लोन नहीं बन सकता है। मैम, हम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, हम समुदाय की बात करते हैं, ऐसे में मेरे मन में एक सवाल आता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो सरकार तक जानी चाहिए, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या एआई की मदद से हम ग्रामीण स्तर की कहानियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा सकते हैं?
1: देखिए, राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने के लिए आपको अब जैसा कि आज मैं सिर्फ एआई नहीं कहूंगी यहाँ पर, आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए तो मुझे लगता है कि शायद आज सोशल मीडिया ही काफी है।
0: बिल्कुल,
1: कि आपने आज किसी मुद्दे पर बात करी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उसके बाद जिस तरह से वो वायरल होता है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं वो देश का मुद्दा बन जाता है। और यही कारण है कि शायद मन की बात जैसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए हुए हैं कि जो देश के मुद्दे हैं वो उन तक पहुंचे, और जब वो मुद्दे उन तक पहुंचते हैं पत्रों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से, तो वो खुद उन मुद्दों को एड्रेस करते हैं बकायदा रेडियो पर। तो इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमें आत्मिक बने रहना है, एक दूसरे से बात करते रहना है, और निश्चित रूप से हमारी बात पहुंचेगी, जन जन तक पहुंचेगी, घर घर तक पहुंचेगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं।
0: जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं बेहद जरूरी हैं, जो AI उस तरीके से नहीं रख सकता जिस तरीके से हम रखते हैं। तो मैम, मेरा अगला सवाल इसी विषय पर है, क्या AI के कारण रेडियो में मानवीय संवेदनाएं और भावनाओं की कमी देखने को मिलेगी? क्या इस वजह से श्रोताओं का जुड़ाव हमसे कम होगा? अगर हम AI यूज करें तो हम किस हद तक यूज करें कि हमारे श्रोता हमसे जुड़े रहें?
1: जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं इसमें यही कहूंगी कि AI यूज कौन कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। जब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, ट्रांसमिशन की, पैकेजिंग की, तब मैं कहती हूँ कि हम AI का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं AI हमारा काम थोड़ा कम कर देगा कि हमें प्रोग्राम को पैकेज करना है। आप और मैं ये साक्षात्कार कर रहे हैं AI की मदद से, आने वाले समय में आपने जो बात की और आपने बीच में मान लीजिए कोई गाना लगाना है, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इस परिप्रेक्ष्य में मैं कौन सा गाना लगाऊं। AI टूल का इस्तेमाल कर तुरंत आपके लिए एक गाने को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और देखिए, जो समय आप आधा घंटा लगाते उस गाने को ढूंढने में, AI टूल की मदद से आपने उस गाने को ढूंढकर
0: कुछ सेकंड्स में ढूंढकर लगा दिया।
1: तो कहने का अर्थ है कि आपकी प्रोग्रामिंग पैकेजिंग के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल बेहतरीन है। लेकिन फिर दोबारा से मैं यही कहना चाहूंगी बार बार कि जब मानवीय मुद्दों की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो दुनिया में हम जैसा कोई नहीं, यानी कि मनुष्य जैसा कोई नहीं है। अब ये निर्भर करता है कि जो संचालन कर रहा है कार्यक्रम का, वो कितना इन्फॉर्म्ड है, वो अपने कार्य के प्रति, अपनी रेडियो प्रोग्रामिंग के लिए कितना ज्यादा सजग है। क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वो ये चाहता है कि मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ भी कहूँ ना, वो सब कुछ विश्वसनीय हो।
0: क्रेडिबिलिटी
1: बहुत जरूरी है। तो वो AI पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहेगा। वो जो भी सामग्री तैयार कर रहा है, जो भी स्क्रिप्टिंग कर रहा है, वो सिर्फ AI की मदद से अपनी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, वो किताबें ढूंढेगा, वो अखबार ढूंढेगा, वो रिसर्च पेपर्स देखेगा, उसके बाद ही संकलन करेगा, संग्रहण करेगा और अपनी स्क्रिप्ट तैयार करेगा। हाँ, AI की मदद ले सकता है, पर पूर्ण रूप से वो AI पर निर्भर नहीं करेगा। जो लोग AI पर पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे, निश्चित रूप से उनके प्रोग्रामिंग में, उनके कार्यक्रमों में आपको कहीं ना कहीं अलगाव महसूस होगा। आपको ये महसूस होने लगेगा कि ये मेरी बात नहीं कही जा।
0: तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे श्रोता उतना नहीं जुड़ पाएंगे जितना कि उस प्रोग्राम से जुड़ पाते हैं जो हम खुद रिसर्च करके, मेहनत करके, समुदाय के बीच में जाकर उनकी संवेदनाओं को महसूस कर बनाते हैं।
1: जी, अब देखिए, माना आप और मैं यहाँ पर एक साक्षात्कार कर रहे हैं, और आपको मेरी जिंदगी की वो पहलू पता है जो शायद किसी को नहीं पता। तो बताइए कि आत्मीयता इस बात से ज्यादा होगी कि आपने उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर किया रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से, या फिर आपने AI के माध्यम से मेरे बारे में ढूंढ कर या उसके द्वारा एक स्क्रिप्ट बनाकर मुझसे सवाल
0: पूछ लिया। जो मुझे आपके बारे में जानकारी है, जो आत्मीय जानकारी है, उस पर अगर मैं अपने श्रोताओं को जानकारी दूंगी तो मेरे श्रोता ज्यादा जुड़ेंगे आपसे।
1: जी जी, तो यही फर्क रहने वाला है कि जो लोग पूर्ण रूप से AI पर निर्भर रहेंगे, वो कहीं ना कहीं उस मानवीय पहलू को भूल जाएंगे।
0: जी,
1: वो उसको उजागर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो लोग जो काम करेंगे, जो करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो ज्यादा जुड़ेंगे अपने लोगों तक।
0: अच्छा मैम, कहते हैं कि रेडियो दिल की आवाज है। रेडियो पर जब कोई गाना बजता है तो वो हमारे दिल तक पहुंचता है। क्या मशीन दिल की आवाज सुन सकती है? मशीन से मेरा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है।
1: जी, सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। जब ईश्वर ने ये दिल सिर्फ इंसान को दिया है, मशीन को नहीं, तो भला मशीन हमारे दिल की धड़कन कैसे सुन पाएगी? मैं फिर से कहूंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बार बार बात हो रही है, ये मानव की ही खोज है। भगवान ईश्वर ने अगर इंसान को बनाया है तो इंसान ने मशीन को बनाया है। जिस तरह से ईश्वर सर्वोपरि है, उसी प्रकार मानव सर्वोपरि है मशीन के लिए। मशीन को भी ऑपरेट करना पड़ेगा, मशीन को भी चलाना पड़ेगा, मशीन को भी कमांड देना पड़ेगा, तो वो हम ही तो देंगे ना। तो जब हम ही देंगे तो हम क्यों सिर्फ मशीन लर्निंग पर, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से? मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को सिर्फ हमें इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है, लेकिन पूर्ण रूप से निर्भर।
0: तो मैं अपने कहना चाहूंगी कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो करना है, लेकिन हमें पूरी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं रहना। मैम, आजकल एक चीज बहुत सुनने में आ रही है, वॉइस क्लोनिंग। कई लोगों ने कहा वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये नैतिक रूप से सही है?
1: मैं कहूंगी कि नैतिक रूप से सही इसलिए नहीं है कि कल चलकर, माना कि अगर क्लोन बना दिए गए और इस्तेमाल भी कर लिए गए, आपने अपनी मैन पावर को कम कर लिया, आपके बहुत सारे मुद्दे सुलझ गए, जहां आप मान लीजिए कि अगर आप किसी रेडियो स्टेशन में 12 घंटे अपने देते हैं तो आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका क्लोन चल जाएगा यानी कि क्लोनिंग वॉइस चल जाएगी। लेकिन ये मानिए कि ये जो दुनिया है ना, ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निर्भर है, खासतौर पर अगर रेडियो की बात की जाए
0: जी।
1: तो जो हमें यहां सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो कल चलकर लोग अपनाते हैं, और जब किसी चीज को अपनाया जाता है तो उसके सकारात्मक पहलू भी अपनाए जाते हैं और नकारात्मक भी। तो कहीं ना कहीं अगर वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल होने लगा तो कल चलकर बहुत ज्वलंत मुद्दे शुरू होने की आशंका है, क्योंकि कहते हैं कि संसाधन हमारे लिए मनुष्य के लिए, पर मनुष्य पर निर्भर करता है कि उन संसाधनों को वो कैसे उपयोग में लेकर आएगा। इसका उपयोग गलत तरीके से होने लगा तो हो सकता है जिसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, वो शायद कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है। कोई भी मेरी आवाज का इस्तेमाल कर मैं बनकर कुछ भी गलत कर सकता है, तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए
0: और इस पर हमें ध्यान देने की भी जरूरत है। मैम, हम सामुदायिक रेडियो हैं, हम समुदाय के लिए ही काम करते हैं, तो आपने सुना होगा कि सोशल स्टोरी टेलिंग, मतलब लोगों मुद्दों की कहानियां जब बड़े मंच पर पहुंचती हैं तो वो लोगों पर काफी गहरा प्रभाव डालती हैं। साथ में जब हम कम्युनिटी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या AI टूल्स आने से सोशल स्टोरी टेलिंग ज्यादा बढ़े हैं, मतलब लोग सोशल स्टोरी टेलिंग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, या पहले की तुलना में कम हुए हैं?
1: देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि अगर खास तौर पर पत्रकारिता की बात की जाए ना, तो पूरी पत्रकारिता में बहुत बड़ा बदलाव आया है
0: जी।
1: पहले एक जमाना हुआ करता था जब व्यक्ति, जब पत्रकार सिर्फ पेन से लिखा, पेंसिल से लिखा करता था। फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, डिजिटाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी जो सशक्त पत्रकार हैं, सशक्त लोग हैं, जो आम जन की आवाज आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं ना, वो आज भी शब्दों की गरिमा को, या ये कह लीजिए विषय की गरिमा को बनाए बैठे हैं। आपके कुछ शब्दों से विषय बदल सकता है, उसका मुद्दा बदल सकता है। आप कितने सजग हैं और आप कितने ज्यादा अपनी जो समुदाय है उसके प्रति आप संवेदनशील हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि AI टूल्स का इस्तेमाल कर या AI का इस्तेमाल कर आप अपनी जो स्क्रिप्ट बना रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, उसमें क्या फेरबदल हो गया। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर संवेदनशीलता की बात आती है तो सर्वप्रथम अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपका दिल जो है ना, वो सबसे पहले आपको सही मार्गदर्शन करता है कि किस रास्ते पर आप जा रहे हैं
0: जी।
1: तो पूर्ण रूप से संवेदनशील विषयों पर AI पर निर्भर रहना, तो मैं यही कहूंगी क्रॉस चेक।
0: बिल्कुल, क्रॉस चेक बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। सिर्फ हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, बार बार यही कहूंगी, निर्भर नहीं होना है
0: जी। बिल्कुल सही कहा, हमें AI टूल्स की मदद लेनी पर निर्भर नहीं होना। तो मैम, अभी तक तो हम रेडियो कहते आए थे, लेकिन आजकल हम सुनते हैं स्मार्ट रेडियो। रेडियो अब स्मार्ट होता जा रहा है, रेडियो पहले से काफी आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो रेडियो है उसके भविष्य को AI किस तरफ ले जा रहा है? ये ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहा है या इनोवेशन की तरफ लेकर जा रहा है?
1: देखिए, मैं ये कहूंगी कि सर्वप्रथम तो ऑटोमेशन
0: जी।
1: सर्वप्रथम ऑटोमेशन इसलिए है कि एक कार्यक्रम को बनाने के लिए ना जाने कितने दिन लगते थे पहले।
0: बिल्कुल,
1: बहुत दिन लगते थे, रिसर्च की जाती थी, स्क्रिप्ट तैयार की जाती थी, फिर स्क्रिप्ट में भी किस तरह की स्क्रिप्ट है ये डिसाइड किया जाता था। अगर पैनलिस्ट हैं आपके कार्यक्रम में तो आपको पैनलिस्ट को बुलाना होता था, प्रोग्रामिंग करने में बहुत सारे दिन लगा करते थे। लेकिन अब क्या है, अब दुनिया भर में काम हो जाया करेंगे। इनोवेशन तो तब होगा जब हम एक नया फॉर्मेट लेकर आएंगे, कि रेडियो के माध्यम से हमने कहा कि हम टॉक शो कर रहे हैं, हम कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम कोई फॉर्मेट लेकर आते हैं तो इनोवेशन होगा। लेकिन अगर हम उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगी सिर्फ ऑटोमेशन है।
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही जवाब दिया। मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि AI सिर्फ एक सहायक टूल है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से निर्भर होना ठीक नहीं है। मैम, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जिस तरीके से AI ने हमारे रेडियो के प्रोग्रामिंग को काफी आसान बनाया है, लेकिन श्रोताओं का जो एनालिसिस है वो किस तरीके से बदलेगा? हम AI से कार्यक्रम तो बना लेंगे, प्रोग्राम तो बना लेंगे, लेकिन श्रोताओं का हमारे लिए इंटरेस्ट लगातार किस तरीके से बदलेगा, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।
1: देखिए, श्रोताओं का इंटरेस्ट तभी बदलता है जब आप उनसे उनकी जैसी बात नहीं करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए बहुत आत्मिक हो रहे हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के साथ जो है ना स्माइल्स एक्सचेंज कर रहे हैं,
0: जुड़ गए हम,
1: जुड़ गए आपस। रेडियो के माध्यम से भले ही आप अपने श्रोता को नहीं देख सकते, श्रोता आपको नहीं देख सकते, लेकिन आपकी जो आवाज की जो गरिमा है, जो उसका जादू है ना, सुनने वाले को अपने रेडियो सेट्स पर यही सुनाई देता है जैसे साक्षात वो व्यक्ति ना मेरे पास मेरे घर में बैठा हुआ है
0: जी।
1: तो अगर हम AI पर बहुत ज्यादा निर्भर होंगे, देखिए AI की भाषा पर अभी भी हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते। आपने कई बार अगर जो लोग ChatGPT और इन सब का इस्तेमाल करते हैं और बड़े शौक से कहते हैं कि हमने ये स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, आप उनकी स्क्रिप्ट और एक व्यक्ति द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट को जब कंपेयर करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आत्मीयता किसमें ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगी और हर बार यही कहूंगी कि मानव मूल्यों का कोई तोड़ नहीं, और AI आपको सामग्री दे सकता है लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जैसे इमोशंस नहीं डेवलप कर सकता, आपके जैसे बात नहीं कर सकता।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे जैसे ना तो इमोशन डेवलप कर सकता है ना श्रोताओं से इतना जुड़ाव महसूस कर सकता है। मैम, हम छोटे स्टेशन हैं, हम समुदाय से जुड़े हुए हैं, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं उन्हें AI को किस तरीके से देखना चाहिए, एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए या एक अवसर के रूप में देखना चाहिए?
1: जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी चाहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन हो, प्राइवेट FM स्टेशन हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किन के लिए काम कर रहे हैं, हमारी आवाज़ किन के लिए है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए है जो हमें सुनना चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगियों में हमारी वजह से बदलाव आता है, जो बदलाव को महसूस करते हैं। अगर ख़ास तौर पर कम्युनिटी रेडियोस की बात की जाए तो अगर आपको वो उपकरण दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रोग्रामिंग को सशक्त कर सकते हैं तो क्यों नहीं। मैं तो यही कहूंगी कि टूल्स का इस्तेमाल चाहे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हो या कोई भी FM स्टेशन क्यों ना हो, जरूर करें, क्योंकि अगर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम किया जा सकता है, जरूर करें। लेकिन हाँ, अगर हम संचालकों की बात करें जो आवाज की दुनिया के जादूगर हैं, उन्हें अपना जलवा आवाज का अपनी ही आवाज में यानी कि अपनी दिल की आवाज के जरिए ही करना है, ना कि AI की दिल की आवाज के जरिए।
0: हाँ, यानी अपनी आवाज का जलवा बरकरार रखना है। मैम, आपसे मेरा अब आखिरी सवाल है और आपने हमें बड़ा कीमती समय दिया है अपना, लेकिन ये सवाल मेरे श्रोताओं के लिए बेहद जरूरी है। हम सामुदायिक रेडियो हैं तो हम समुदाय की बात ही करेंगे क्योंकि हमारा समुदाय ही हमारी ताकत है। मैम, समुदाय के बीच में जाकर एक बात मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि लोकल भाषाओं को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि समुदाय अपनी भाषाओं से बहुत तेजी से जुड़ता है। तो क्या AI लोकल भाषाओं में प्रोग्राम बनाकर कंटेंट को और जीवंत बना सकता है और या उसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है?
1: मैं तो यही कहूँगी, जब मेरी माँ बचपन से मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय भाषा में बात करती आई और मैंने उस भाषा में अपनी माँ को ढूंढ लिया, तो बताइए क्या AI मेरी माँ बन सकती है? उसी भाषा में क्या AI मुझसे बात कर सकती है जो मार फटकार प्यार दुलार मेरे परिवार से मुझे मिला मेरी भाषाओं या मेरी भाषा के माध्यम से, जिस भी क्षेत्र को मैं संबंध रखती हूँ जिस भी क्षेत्र से, तो जो चीज़ मुझे बिन मांगे मिल गई वो मांग कर यानी कि AI के माध्यम से कैसे मिल सकती है? मेरा पूरा जीवन अपनी क्षेत्रीय परिसर में गुजरा है।
0: बिल्कुल,
1: तो जो मेरे क्षेत्रीय लोगों ने मुझे दिया, जो भाषा मुझे प्राप्त हुई वहां से, AI जिसका जन्म अब हुआ, वो कैसे मुझे वो दे सकता है जो मेरे साथ बचपन से मेरे साथ था ही नहीं? तो जो मेरे साथ बचपन से था ही नहीं वो मुझे समझ ही नहीं सकता, जो मुझे समझ ही नहीं सकता वो मुझे वो क्या कैसे दे सकता है जिस बात की मैं कल्पना कर रही हूँ? तो मैं यही कहूँगी कि क्षेत्रता की अगर आप बात कर रहे हैं तो व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र से संबंध है वही उन मूल्यों को आम जनमानस तक पहुंचा सकता है जिस क्षेत्र से वो संबंध रखता है। AI फिर कहूंगी कि ये सहायता का उपकरण है।
0: बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे बीच में एक सेतु का काम कर रहा है
1: जी।
0: AI हमारी मदद कर रहा है सूचनाओं को देने में, हमें अपडेट करने में, हमारे टूल्स को आसान बनाने में, तकनीक को आसान बनाने में, फिर भी जो हमारी संवेदनाएं हैं उस पर हमें उसी तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से हम करते आए हैं। हमें समुदाय के बीच में जाना होगा, लोगों को सुनना होगा, समझना होगा और लोगों की हर बात को अपने स्तर से पहुंचाना होगा। हाँ, तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे मेरे साथ गीतिका उनियाल जी को, जो कि FM रेनबो पर बहुत फेमस प्रेजेंटेटर हैं। उनकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है और लोग उनकी आवाज़ से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, जैसे कि हम और आप भी जुड़ गए। आज स्टूडियो में उन्होंने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया और हमसे AI तकनीक और सामुदायिक रेडियो के भविष्य पर काफ़ी बातें शेयर करी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। मैम, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, एक और विषय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं फिर कहना चाहूंगी कि AI हमारे टूल्स की जानकारी के लिए प्रोडक्शन में मदद करेगा, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की जगह, ओरिजिनलिटी की जगह, जिज्ञासा की जगह, समुदाय की आवाज की जगह AI नहीं ले पाएगा।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11666 पर संपर्क करें।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
0: ओ, मुझे बुखार हो गया है।
1: अब्बा, टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
0: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत हैं। हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
0: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: हाँ जल्दी आओ अप्पा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों, अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: डरना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: सोनू शारदा।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है,
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
1: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है,
2: तो भुगतो।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जीन्स लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद हैं, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, हम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं आप?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुठलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती है। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इम्पैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
3: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुनो शारदा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
2: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
1: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
2: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
3: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: महामारी के दौरान सामान्य लक्षण, आइए इनके बारे में जानते हैं। सिर दर्द, स्तनों में दर्द, पेट फूलना, ज्यादा पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द या पेड़ू यानी कि पेट के नीचे में दर्द, ये सब महामारी के दौरान दिखाई देते सामान्य लक्षण हैं।
1: यदि महामारी के दौरान आपको पेट में दर्द हो रहा हो तो आप पेट दर्द में राहत के लिए एक बोतल में गर्म पानी भरें और एक तौलिए में लपेटकर उसे पेट पर रखें।
0: पेट की मालिश करें, अदरक की या कोई हर्बल चाय ले सकते हैं, कम नमक वाला आहार लें, पत्तेदार सब्जियां और फल खाएं जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है, तेज चलने वाली सैर करें। अगर इन सब से कोई मदद नहीं मिलती है और कोई अनियमितता दिखती है तो नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भाभी लो मिठाई खाओ।
2: अरे किस खुशी में?
1: सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
2: वाह, तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए हैं सब उसे।
1: ओहो भाभी, रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
2: अनीमिया?
3: अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
2: ललिता लो मिठाई खाओ।
1: अरे वाह, रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
4: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प है। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और type 2 diabetes के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं, और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं

0: कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: चारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: शादी के बाद भी ऐसे ही रहना, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है।
7: अरे वाह, आज तो एकदम शाहरुख खान निकल रहा है।
6: सच्ची? ये ऐसे

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी,
1: सब ठीक बा?
2: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी,
2: जैसे रहुआ कहल रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी ओके रा के तुरंत साफ करी, जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे सब के साफ सफाई करी ले हम।
3: और आस पास कहूँ भी टायर नर

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
6: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम। सुनो शारदा
1: 90.8 एफएम। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही और मैं हूँ आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा 90.8 एफएम और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
2: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख के चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ, बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम खराब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है।
2: काम बहुत जरूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
1: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
2: उनको यही सिर पर कपड़ा रखें हर समय
1: जी।
2: दूसरा ये कि कम से कम जो है, मतलब ऐसे ही समय यदि देखें बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
1: और
2: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैरी में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
1: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
2: उसमें आराम करें,
1: उसमें आराम
2: भी जगह मिल जाए, लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह का जगह है उनको वहाँ पर अपना।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना, बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
2: खास तौर से जो है आपको, एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें इससे। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
1: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
2: हीट स्ट्रोक
1: हो जाता है,
2: बुखार आ जाता है,
1: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
2: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता इतना, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं औरतें हैं, बच्चों को लेकर कई रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं, और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
1: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
2: लूज मोशन भी है,
1: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
2: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है लूज मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते
1: हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
2: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ORS?
2: ORS एक जीवन रक्षक घोल है
1: जी,
2: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
1: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
2: तब भी उसको ले सकते हैं,
1: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
2: दिनचर्या तो यही कि सुबह जल्दी उठे
1: जी,
2: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें, लेकिन व्यायाम सबसे पहले है ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज साधन ऐसी है जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए। जो भी अच्छे आपके जो कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
1: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
2: गर्मी से बचें, थोड़ा सा तंग हो सकता है, जितना हो सकता है, ये नहीं कि काम बंद कर दें। बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं। घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें इसमें।
1: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं, समुदाय के लोग हैं, ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

रात को, तब ये नहीं बचा पाएंगे अपने आप को।

0: मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: तीन तारा मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
2: बाय बाय।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
4: पहली से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
5: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय

कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।